नमस्कार, सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदनुसार आज दिनांक 31 मई सन 2026 ईस्वी समय प्रातः के 5:57:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा का आरंभ करते हैं इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा

0: Jai Sudarshan and Joss Butler. While all-rounder Jason Holder has strengthened their bowling attack with important wickets in the second half of the season. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में महिमा भुले नाथ की के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। ये अब सुनिए अनुराधा पौड़वाल और साथियों के स्वर में ये मीरा भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार विशु और साथियों को। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए सुरेश वाडकर और साथियों के सुर में ये भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है मन। वाचक स्वर हैं प्रेम सिंह गोदारा के।
1: मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, ऐ जपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज़्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलसपरसी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी 1 घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें, किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदारी होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना होगा, जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहाँ पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें। ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है। जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता, उसे छोड़ दे तो वह नाम अपने आप याद आ जाता है। जो क्षण बीत गया वो दुनिया की सारी संपदा दे करके भी हम वापिस नहीं पा सकते, और जो क्षण आने वाला है, जो कैसा होगा हमें जिसका पता नहीं है, वो जब तक वर्तमान नहीं बन जाता हम उसमें कैसे जिएंगे। जीना तो हमें

0: वर्तमान में है, लेकिन हम एक ऐसा मन लिए हुए चल रहे हैं जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या फिर भविष्यकाल में जीना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन जीना नहीं आया, हमें जीवन जीने की कला नहीं आई। साधना ध्यान हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, हमें अपने मन का मालिक भी बनाता है, सही अर्थों में गुलामी से मुक्ति दिलाता है। दुनिया में सब कुछ पा लेने का भी कोई सार नहीं यदि स्वयं को नहीं पाया, स्वयं के मालिक नहीं बने। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली, मिला के उसकी तार से बेतार को, पैदा उससे मिलने की हालात कर ली।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन था मन। वाचक स्वर थे प्रेम सिंह गोदारा के। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, लेकिन पहले सुने ये संदेश।

श्रोतों, प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती हर वास्ते। जानकारी का विषय होगा लवणीय सिंचाई जल का उपयोग। 7:20 पर कार्यक्रम मानस कान में आज आप सुन पाएंगे भाग संख्या 260। कार्यक्रम सुप्रभात में आज जानकारी के विषय होंगे जीवों पर दया, जीवन में सफलता और हमारे सच्चे मित्र पुस्तकें। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से प्रातः 8:45 पर, दोपहर 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। आज कलाकार होंगी भारती सोनी। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से सुबह 9:30 पर, दोपहर 2:30 पर और संध्या 7:45 पर। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सदाबहार नगमे आप सुन पाएंगे दिन में 10:00। प्रातः 10:55 पर आप सुन पाएंगे प्रधानमंत्री जी से मन की बात।

दिन में 12:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 12:50 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में आज जानकारी का विषय होगा फूल गोभी की उन्नत खेती। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। संध्या 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। संध्या 6:05 पर कार्यक्रम होगा सराय की। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुना करते हैं प्रत्येक रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम अनुगूंज और 10 बजे आप सुन पाएंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। आज की ये हमारी सभा संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयम् हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण

0: विजय। और ई क्षेत्र का मकसान भैयो अपने पानी है वो भी कई त्रियांगो है, क्योंकि कई जगह तो खारो पानी है, कई जगह मीठो पानी है, और कई जगह या कई जगह का आप थोड़ो बिचाड़लो सो पानी है, यानी कि ना तो वो ज्यादा खारो और ना ज्यादा मीठो। और आपने किसान भाई लोग अबे पानी ने बिना जांच करवाए आपने फसल बीज लिए, और भी बाद का माँ भी फसल का माँ वो पानी है जो लगा बो करे, और कई बार यहाँ हुआ है कि वो पानी लगाने के बावजूद भी आपने जो फसल है बाप ने सही पैदावार है बाप कौन मिले नहीं। इस वास्ते किसान भाइयों आपने जब भी कोई फसल बीजा तो आपने सबसे पहला पानी के बारे में जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए कि आपकी फसल के लिए वो पानी माफिक है या नहीं है। और कई भाई लोग तो आप आते के देगा पानी तो बहुत मीठो है, क्योंकि आप कई बार पी के देख लिया पानी, और पी के देखना पर अपन पानी को जो स्वाद है वो अपन थोड़ा बहुत खारो लग गए तो आप यहाँ कह दे वहाँ का वो खारो पानी है। लेकिन हर एक खारो पानी पीने में खारो लगे वो जरूरी को नहीं, क्योंकि कई बार पानी पीने में तो मीठो लगे लेकिन बिग वहाँ कई तरह का जगह मिलेड़ा घुलनशील लवण है वे फसल का सागा सागा अपनी जगह भूमि है बिन भी खराब कर दिया है। इसी पानी किसान भाई स्वाद में तो अच्छा लगे लेकिन बिग वहाँ लवणा की मात्रा है बिंगो ज्ञान अपन है माटी की जांच या फिर पानी की जांच अपने प्रयोगशाला में जाके करवा के फेरी पत्तो लाग सके। और पानी में भी देखा तो कई तरह जहाँ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम क्लोराइड है, ऐसी चीज़ें हुए, लेकिन पानी के अंदर किसान भाइयों ज़्यादा लवण है, ज़्यादा सोरो है, तो वो पानी न तो आपने पीने के लायक है और ना ही वो पानी है जो को आपने सिंचाई के लिए फायदेमंद है। किसान भाइयों ज़्यादा अगर खारा पानी से अपना लगभग सिंचाई करता रहे से तो माटी में जगह घुलनशील लवण है बंग सुंदरता बढ़ जाएगी, और इसी जमीन का वहाँ बीज को जो अंकुरण है और पौधे की जो वृद्धि है बा बहुत कम होएगी, और बिंग उपज पर भी इनको उल्टो प्रभाव पड़ेगा। और इनके अलावा किसान भाई पौधे की पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ने वह अवशोषण करने की ताकत है वह भी खत्म हो जाएगी। सिंचाई जल का किसान भाइयों सोडियम कार्बोनेट की ज्यादा मात्रा होने की वजह से माटी की जगह आकार है वो यहाँ केस कहाँ के यहाँ बिखरेड़ो सो जाए या छोटे छोटे कणाड़ो दगड़ाड़ो सो जाए, और चिकनी माटी के ऊपर बारीक कण पानी के सागे सागे नीचे जाके कई गहराई पर जमा हो गए और सख्त सतह को निर्माण करे जिससे पानी को जो को निकास है वो अवरुद्ध हो जाए। हर जे किसान भाई पानी में बोरोन की मात्रा ज्यादा है तो वो फसलों पर विषैलो प्रभाव छोड़े। इस वास्ते किसान भाई अपने ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि पानी अपन सबसे पहला जांच करवाना है और माटी की जांच भी जरूरी करवानी है। अपने बरसात को जो को पानी है बिंगो आप उचित उपयोग करना जरूरी है। बरसात होने से पहला खेता ने अपना समतल करके और बिंग मेड़बंदी कर देवा ताकि बरसात वाला जो को पानी है वो अपने खेत उबारा ना जा सके, और बी पानी के अंदर जगह घुलेड़ा लवण है वे बरसात को पानी है जो को जमीन के नीचे ले जाए और माटी की लवणीय क्षमता है वह कम हो जाए। और इनके अलावा किसान भाई सिंचाई का तरीका में भी अपन सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अपन है पानी की बचत करनी है और कम पानी के अंदर अपन ज्यादा सिंचाई हो जाए इसी फसलों को इसी किस्मों को अपन चुनाव करना चाहिए। और अपने किसान भाई लोग जगह खुल्लो पानी लगा दे क्यारा का माँ तो अपन क्या करना कि और तरीको है जो अपन बंद करना पड़ेगा, अपन थोड़ी हल्की सिंचाई रखनी पड़ेगी, और इनके अलावा बूंद बूंद सिंचाई को भी अपना इस्तेमाल कर सका, क्योंकि ज्यादा गहरी सिंचाई करने से मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर जगह घुलेड़ा लवण है वे गुड़गे नीचे चले जाए। किसान भाई खारा पानी से अगर आप फुहारा से सिंचाई कर ला रहे हैं तो इनको एक उल्टो प्रभाव भी अपने जगह पौधा है बंग पत्तियां पर पड़े, तो इन वास्ते अपने क्या करना है कर सिंचाई है अपने रात न करनी चाहिए। किसान भाई अपने कहना अच्छो पानी भी है तो अपने की थोड़ा सो साफ सुथरो पानी भी लगा देना चाहिए ताकि जो को लवणीय पानी है बिंग मात्रा है वह कम हो जाए, और जब तक हो सके किसान भाई अपने मिलवा पानी को प्रयोग कर लेना चाहिए, यानी कि खारो और मीठो पानी अपने इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अपने किसान भाई लोग अभी ज़्यादातर ट्यूबवेलों का पानी इस्तेमाल करें और ट्यूबवेलों का पानी के अंदर आजकल सोरो और लवण की जो मात्रा है वह सबसे ज्यादा है, तो इस वास्ते अपन खारो और मीठो मिला के भी आप फसल का मां देश का और कम पानी चाहने वाली जो किस्म है और जो लवणीय पानी ने किस्म झेल सके बे किस्मों को चुनाव करके ही अपन विचार करनी चाहिए। और जब तक हो सके किसान भाइयों तो अपन बिना रूणी काटे ही खेत का मां बिजाई कर देवा और बिजाई के बाद का मां अपन पानी लगा दें। इशू के किसान भाइयों के जब तक पौधे की बढ़वार होगी या फिर अंकुरण होगा भी टेम तक आपने जमीन का माँ या नमी बनी रहेगी, तो ये बात को ध्यान रखना है। और इनके अलावा खेत का माँ गोबर की सड़ी गली खाद है, कंपोस्ट खाद है, बिंगो ज़्यादातर अपन इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों पौधा का मध्य लाइना का माँ की दूरी है अपन कम रखनी है और बीज की मात्रा 20-25% तक अपन ने बढ़ा देनी है, तो आ बातों को ध्यान रखना है। पड़ा मैं खेत का निचालू, राम राम शाह, राम राम।
1: लवणीय सिंचाई जल का उपयोग, अभी किसान भाई सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी कार्यक्रम खेती हर वास्ते में। श्रोतों लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मानस काल में भाग संख्या 260।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात कुल धर्म धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान में भाग संख्या 260, मुख्य स्वर थे सुरेश वाडकर के। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज जोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30:20 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री

त्रि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोतों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जीवों पर दया, जीवन में सफलता और हमारी सच्ची मित्र पुस्तकें विषय पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवों पर दया विषय पर। श्रोतों, जीवों पर दया करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और अन्य जीव भी रहते हैं। सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है, इसलिए हमें उनके प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। दया एक महान मानवीय गुण है। जो व्यक्ति जीवों पर दया करता है वह सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य होता है। पशु पक्षी भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं, उन्हें भी भूख, प्यास और दर्द महसूस होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के समय में अनेक पशु पक्षी पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों की कटाई और मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण संकट में हैं। हमें उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखना, घायल पशुओं की सहायता करना तथा जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना हमारे कर्तव्य हैं। महापुरुषों ने भी सभी जीवों के प्रति अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया था। उनके विचार आज भी हमें दया और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। अतः हमें सभी जीवों के प्रति दयालु बनना चाहिए। जीवों पर दया करने से समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना का विकास होता है। वास्तव में जीवों पर दया ही सच्चा मानव धर्म है। श्रोतों, लीजिए सुनिए फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, अब बात करते हैं जीवन में सफलता पर। सफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता का अर्थ केवल धन या पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करके संतुष्टि और सम्मान प्राप्त करना भी है। सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास और अनुशासन आवश्यक है। बिना मेहनत के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है और निरंतर प्रयास करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग भी सफलता की कुंजी है। समय का महत्व समझकर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच, धैर्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी सफलता के लिए आवश्यक है। महान व्यक्तियों का जीवन हमें सिखाता है कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां होती हैं। असफल होने पर निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अतः सफलता वही प्राप्त करता है जो अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहता है और निरंतर प्रयास करता है। इसलिए हमें मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का सच्चा मार्ग है। श्रोतों, लीजिए सुनिए नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म घर परिवार का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बात करते हैं हमारी सच्ची मित्र पुस्तकों पर। श्रोताओं, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती है। पुस्तकें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती और जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती है। पुस्तकों के माध्यम से हमें महान व्यक्तियों के विचारों, इतिहास, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छी पुस्तकें हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है तथा हमें सही और गलत का अंतर समझने में भी सहायता करती है। वे हमारे विचारों को व्यापक बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल और इंटरनेट का प्रचलन बढ़ गया है, फिर भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। पुस्तकों का अध्ययन हमारी एकाग्रता, भाषा ज्ञान और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकरण

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आज जानकारी के विषय थे जीवों पर दया, जीवन में सफलता और हमारी सच्ची मित्र पुस्तकें। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजे हैं। दीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।

0: सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से

0: अच्छी खबर है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स इन मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज इंडियन नेवी फोर्स्ड पाकिस्तान नेवी टू रिमेन कन्फाइंड टू इट्स पोर्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिन आउंग ग्वांग अराइव्स इन न्यू दिल्ली ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया, ऑफर्स प्रेयर्स एट महाबोधि टेम्पल इन गया। Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu.

0: हालात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तिलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग एलेंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राबतों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ के ईंधन की औसत बैन अलावामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायज़ा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाज़े किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजर सानी शुदा ड्यूटीज़ का कल से इतलाक़ होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास

0: के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वज़ारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। ये दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज़्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निज़ाम कोहरे और ख़राब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तोसी दी जाएगी जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उरवली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीज़न के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रियासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रियासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बरदरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,

0: उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकामात पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकामात पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले दो दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। आरसीबी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटन्स ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ख्वातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़रात और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मीशत मजबूत मगर एहतियात ज़रूरी, वजारत ख़जाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मीशत के करीबी मुस्तबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोज़ा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत भजन। आज कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े

0: विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात किया गया था।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: फुलेरा के पास हिरनौदा गांव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियाणा और राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई।

0: वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गईं। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारां में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया, जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।
1: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं, उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 30 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज। प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज जोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:10:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार हैं भारती सोनी।

राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं भारती सोनी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार थी भारती सोनी। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अपनापन के इस गीत के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोतों लीजिए सुनिए शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और सुर दिया है बप्पी लहरी ने।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को, फिल्म का नाम था सिर्फ तुम। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अलका याग्निक, कुमार शानू और साथियों को। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत समीर का है और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन एआईआर पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म धर्मवीर के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। संदेश हम तक पहुंचा है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजनन येल्ले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येल्ले। तंत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। कृष्णा विहार कॉलोनी नोहर राजस्थान से मधुलता पुरोहित, राकेश और प्रांजल। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। इसी गीत की फरमाइश करता है नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल और सोपान। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगननाथ सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा। इसके अलावा हमारे पास कुछ खत भी पहुंचे हैं, जिनमें पहला खत है श्रीगंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा। सादुल शहर से ओम प्रकाश, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वैद प्रकाश चौहान। मक्कू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर और मुनिश बजाज का। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म धर्मवीर का ये प्यारा सा गीत।

अगला संदेश हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा है गांव घमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढोकिया और ईवा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चक सात डीबियन भादुवाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय, जय सिंह, बिटिया योगेश्री, रंजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह बगानिया, हरनेक सिंह, विचित्र सिंह और कृष्णलाल राहड़। हयात कॉलोनी अरेरिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। सादुल शहर से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। शनि मंदिर चौक खड़वा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। इसके अलावा हमें पत्र मिला है अनूपगढ़ से जुगल किशोर ढालिया, मनोहरी देवी, मनोज ढालिया, सरस्वती, गंगा, पूनम, पीकू, नव्या और राजकुमार ढालिया। बड़ोपल रोड सूरतगढ़ से शैलेंद्र सिंह छिंदा, केवल कृष्ण मिस्त्री और विनोद मंगलाव। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म संगम का ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने।

नावा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत कौर और मनु। लकवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, सौरव, विशाल, राजबाला, लक्षिता, नव्या, ममता। संगरिया से मुकनाराम, महावीर लोहरा। गांव नैयावाली जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। इसी गीत के फरमाइश करते हैं चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोसन, वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन। ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो और विनोद खां। गंज डुडरा वारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार। गांव जाखोद राजस्थान से शंभूदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। आप सबको हम सुनवाते हैं फिल्म सूरज का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री के साथ। हमारे अगले गीत के फरमाइश करता हैं गांव बागसर पीलीबंगा से मोनू गोड़, अनिल गोड़, सुमन, रंजीत, मुकेश, ममता, धनवीर और उनके परिवार के सदस्य। मंडी गोलूवाला से ब्रजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत। डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया। संगरिया से श्याम मिड्ढा और सुमन मिड्ढा। गांव खोकरावाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खां और जिशान खां। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा और उनके परिवार के सदस्य। लखुवाली हेड से भंवरलाल कृष्णा, सौरभ, विशाल, राजबाला, लक्षिता, भव्या, ममता। गांव कला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्ध कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी और किशन। इनके साथ है कीड़ूराम जोया, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा। गांव खारियाढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। ज्वारनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म धर्मात्मा का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोतों लीजिए सुनिए फिल्म उपहार से गीत इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, पसंद आप सबकी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब और रामनिवास अग्रवाल, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत अनमोल और पवनीत ग्रोवर, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के खुराना, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरदीप सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, गांव अरियान से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, भूचो केंचिया से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजकुमार, माफ कीजिएगा, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू,

नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, योगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और तिशा गोस्वामी। मुक्सर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म उपहार का ये प्यारा गीत।

0: पसंद आप सबकी अलका डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत और रानी सोनू रजनी, अमरपुरा जालूखाड़ से जगदीश चंद प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र प्रजापति, गोर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु ओ रिधान खुराना, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार, उचवट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन, आदर्श नगर मोड़ौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, गंज डूंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खां, फैजान खां, अन्नू खां, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा। अगला खत हम तक लिख भेजा है बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली यूपी से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेंद्र कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना भारती, ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथ्वी सिंह। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म जोनी मेरा नाम का ये गीत।
1: नहीं नहीं नहीं,

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म तीसरी मंजिल से। आवाजें हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की, पसंद आप सबकी। गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से प्रताप चिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी रॉय। गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। धनोरी तेलीवाड़ा, उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू। मामूलवाड़ी, महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव, निर्वृति और तुषार करंगले। नागचून रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनवीस खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। गांव न्योला, रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, सकीला डीडन, संदीप, अनवर, अक्कू। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द। सूरतगढ़ से रंजीत सिंह सुथार, प्रीति सुथार, ताराचंद सुथार और टेकचंद चरण। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म तपस्या से, आवाजें किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की, पसंद आप सबकी। गंज डुडुवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव और मास्टर अल कबीर। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम और अदीब। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला चूरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, सोनम, सोमल और कार्तिक सोनगरा। गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि गर्ग, शिल्पा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी करवी और बेबी

वही हिमांश। कोसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू, बाबा शेख, सिमरन शेख, करिश्मा शेख। गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा से अमृत पाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और मनिंदर। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म तपस्या का ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म तपस्या के इस गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 10:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मन की बात।

0: आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का।

0: आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
11: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
12: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के

0: फ्रेंड से, उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर. एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है. एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली.
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ. अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है. और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ. मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं. तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था. मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था, तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है. तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी, मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया. तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है. वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ. तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे. तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा. तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो. तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है. तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है.
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो.
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर. फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी. उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा. तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा. तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे. तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं. और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है. तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है. तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर.
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना. और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया. तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है.
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो. जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते. तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा. तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता.
1: अनिमेश जी.
0: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं. तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही. मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं. तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना. एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं. क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि

0: इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है।

लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से

राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर

जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए
आज मैं इसकी चर्चा आपसे

0: करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन

जेठ के महीने की दोपहर का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक अलग ही तस्वीर उभर आती है। आसमान से बरसती आग, धरती से उठती तपिस और दूर दूर तक फैले रेत के टीले। थार का जीवन आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लिया है। कभी गांव में पानी भरने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता था, वहीं आज पानी की कमी है उसको दूर किया गया है। आज भी जब हम नल खोलते हैं तो पानी आसानी से मिल जाता है, तब शायद हमें इसकी असली कीमत का पता चलता है कि पानी कितना ज़रूरी होता है। लेकिन रेगिस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि पानी की एक एक बूंद कितनी अनमोल है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इसमें आज आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में गई चंद गज़लें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव के साथ साथ FM पर भी 100.1 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुना जा सकता है। 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है फूल गोभी की उन्नत खेती।
1: कार्यक्रम सुनेनिया सगले परिवार ने भाई राजन का घना घना राम राम, मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा। भाई लोगों आपा सगला खेती खड़ मिणक हाँ और हमेशा अपनी जी की खेती है बिना सफल करण वास्ते आपा निरंतर प्रयास करता रहा। आधुनिक खेती की बात करा तो आपा रोज़ दिन कुछ ना कुछ आपकी खेती में नई चीज़ को प्रयोग करा जिकाऊँ कदे कदे आपा ने फायदो हुए तो कदे कदे नुकसान भी आपा ने हो जाए। पर जिया अपना बड़ा बुढ़ा क्या करे और आजकल आ रीत भी एक बन गई है कि जिको इंसान बदलाव ने स्वीकार करे और बदलाव के साथ आगे बढ़े वो जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें। खेती पाती के अलावा देखा तो अपना किसान भाई रोज़मर्रा की जिकी आपकी आय है बिना बढ़ान खातर सब्जी को भी सहारो लेवे जी में कई नकदी फसलें भी आवे और इनके अलावा अपना कई किसान भाई बाग बगीचा भी लगावे हैं। सब्जियां में बात करा आज फूल गोभी की तो हर मौसम में देखा तो आपा सब्जियां को अपने जीवन में एक प्रमुख स्थान है और फूल गोभी की बात करा तो इंगमा विटामिन की पर्याप्त तो मात्रा हुए और बाकी सब्जियां की तुलना में भी देखा आपा तो प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाए जावे। सब्जी के अलावा आपा इंग उपयोग सूप बनाने में और अचार बनाने में भी करा हाँ। फूल गोभी की बात करा तो आपा अनेक प्रकार की माटी में आपा इन्हें उगास का जगह गवा के पोषक तत्वों की और जीवांश पदार्थों की मात्रा पर्याप्त हुए और उचित नमी हुए। सागे सागे देखा तो जल निकास की भी समुचित व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। अगेती किस्म खातर बात करें आपा तो बलोई दोमट और पछौती किस्म में चीकड़ी दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी रहे। सब जरूरी बात आपा कोई भी फसल लगावा तो आपा जिकी बिंगी किस्म चुनन लाग रहे हाँ भाई उपयुक्त किस्म होनी चाहिए और आपा ने बिंगी पूरी जानकारी होनी चाहिए। बुआई के हिसाबों बात करा तो आपा भांत भांत की किस्म ने अलग अलग भागा में बांटेड हुए हैं। अगेती किस्म की बात करा तो आंगी बिजांत मई महीनाओं ले गए जून गए आखिर तक आपा कर सका हम। आम आवे समूह पहले अर्ली पटना ये किस्म का फूल मध्य सितंबर ले गए मध्य अक्टूबर तक आपा ने उपलब्ध हो जाए। अर्ली कुंवारी की बात करा तो ई किस्म का फूल मध्य सितंबर मध्य अक्टूबर तक बाजार में आ जावे हैं। पूसा कात की देखा आपा तो इंगा फूल नवंबर तक आपा ने उपलब्ध हुआ है और ए फूल भूरा रंगा थोड़ा बिखरेड़ा सा हुए है। फूल बनने के खातर जब आपा देखा तो 20 डिग्री ले गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सारों ज़्यादा उचित मान्यो जावे। पूसा दीपाली की आपा बात करा तो इंगा फूल सफ़ेद और थोड़ा भरया भरया हुआ है और अक्टूबर नवंबर महीना के दौरान इंगा फूल आपा ने उपलब्ध हो जावे हैं। फूल बनन खातर उपयुक्त तापमान लगभग 20 डिग्री 25 डिग्री

सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। पूसा अर्ली सिंथेटिक की बात करा इन आपापंत गोभी तीन के नामों भी जाना हाँ और ए भी कई इसी और उपयुक्त किस्मा में शामिल हैं। मध्यम किस्मा में बात करा भाई लोगों जिका गुफल आपने मध्य नवंबर ले गए मध्य जनवरी तक मिल जावे है इमावे है। इम्प्रूव्ड जापानीज इंगा फूल दिसंबर मध्य जनवरी तक आपने उपलब्ध हुए और फूल सफ़ेद होने के सागे सागे थोड़ा कसेड़ा और फूल बनने को जिसको तापमान लगभग 16-19 डिग्री सेंटीग्रेड तक करवाएं। पूसा हाइब्रिड दो और पूसा हिम ज्योति भी अपनी कई और मध्यम किस्म हैं। पछेती किस्म में देखा तो पूसा स्नोबाल के एक को नाम आवे है। ई किस्म का फूल आपने मध्य जनवरी ले गए मार्च तक प्रयोग खातर उपलब्ध हो जाए हैं। अन्य किस्म में देखा तो हिसार एक दानिया सिलेक्शन सात एक किस्म प्रमुख हैं। फूल बनन खातर लगभग 10-16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सब ज़्यादा बढ़िया मान्य जाए। अब आ फसलों ने लगाणु पहले आपा अपने जी की खेत की तैयारी है भी मैं अच्छी तरीके खेत ने जुताई कर गए माटी ने हल्की और भुरभुरी बना लेवा। विपरीत दिशा में माटी पलटन आला हलूँ आपा एक या दो बार जुताई करा और इंग बाद देसी हलूँ तीन चार बार जुताई करनो पर्याप्त रहें। खाद और उर्वरक की बात करें तो खेत की तैयारी के टाइम पर लगभग 250-300 कुंटल अच्छी सड़ीडी गोबर की खाद आपा जमीन गमा मिलाते वहाँ। इंगे अतिरिक्त आपा बात करें तो 120-150 किलो तक नाइट्रोजन 80 किलो फॉस्फरस और 60-80 किलो तक पोटास प्रति हेक्टेयर की दरों आपा जमीन गमा मिलाते वहाँ। नाइट्रोजन की जिकी आधी मात्रा है और फॉस्फरस और पोटास की पूरी मात्रा जी टाइम पर आपा पौध लगावा बी टाइम पर जमीन गमा मिला देवा और बचड़ी जी की नाइट्रोजन की मात्रा है बापा पौध लगाने गए 6 हफ्ते के बाद आपा जमीन में दे देवा। फूल गोभी की पौध भी आपा तैयार कर सक किसान भाइयों और पौध तैयार करने खातर आपा बीजा की जी की बीजान तैबा उठड़ी क्यारियां में कर सक हाँ। क्यारियों के खातर आपा उपजाऊ और अच्छी जी की जल निकास वाली जमीन है बिंगो चयन करा। बीजान तो पहले बीज ने आपा कैप्टान या थाईग्राम थाइरम 2-3 ग्राम प्रति किलो बीज की दरों उपचारित कर लेवा। गोभी की जिकी अगेती किस्म है भाई लोगों बांगी बीजांत मई ले गए मध्य जून के अंत तक आपा कर सका। मध्यकालीन किस्म में देखा तो आंगी बीजांत जुलाई अगस्त तक आपा कर लेवा। पछेती किस्म की बीजांत सितंबर ले गए अक्टूबर के आखिर तक किसान भाई आगे आने वाले टाइम पर कर सके हैं। अगेती किस्मा खातर लगभग 600-750 ग्राम तक बीज पर्याप्त रहें। बठई मध्यकालीन और पछेती किस्मा में लगभग 375-400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तक पर्याप्त रहें। बीज ने किसान भाई कतारा में बोवे और माटी की बारीत पर को ढक देवे। सिंचाई आपा अगर फवारा विधियों करा तो अपने खातर बहुत फायदेमंद रहेगी। पौध की रुपाई की आपा बात करा तो रुपाई पहले अपने किसान भाई प्रति हेक्टेयर 1-1.5 किलो फ्लू क्लोरोलिन छिड़क के बिना तुरंत जमीन गमा मिला देवे या 100 ग्राम ऑक्सी फ्लोरोफिन जमीन गमा मिला देवा। बिंग बाद फसल की 45 दिन की अवस्था पर आपा एक गुड़ाई कर लेवा। बीजांत गए लगभग 4-6 हफ्ता में पौध है जिकी बा खेत में लगान खातर तैयार हो जाए और उचित दूरी पर बिना खेत में आपा रुपाई कर देवा। अगेती किस्म में कतारों कतारगी और बूंटाऊँ बूंटा की दूरी है जिकी बापा लगभग 45 सेंटीमीटर तक रखा। बटई मध्यकालीन और पछेती किस्म में आपा कतारों कतारगी दूरी 60 सेंटीमीटर और बूंटाऊँ बूंटा की दूरी 45 सेंटीमीटर तक रख देवा। पौध लगान गए तुरंत बाद आपा हल्की सिंचाई कर देवा और बाद में जरूरत के हिसाब टाइम टाइम पर आपा सिंचाई करता रहा। हल्की माटी में किसान भाइयों 5-6 दिन बाद और भारी माटी में 8-10 दिन बाद आपा सिंचाई कर सका हाँ। निराई गुड़ाई की बात करा तो कई बार के खरपतवारों होने वालों जी को नुकसान है बिने रोकण खातर निराई गुड़ाई समय पर करनी बहुत जरूरी है। फसल में लगभग 2-3 बार आपा निराई गुड़ाई कर लेवा और निराई गुड़ाई करता टाइम पर पौधा पर माटी भी आपा जरूर चढ़ावा। जिया जिया भाई लोगों फसल जी की अपनी समय समय पर बढ़वार लेवे तो भी मैं किए कीड़ा कांटा भी लागे और हरी बीमारी भी आवे तो समय समय पर आपा बांगू बीजी को है पूरा जाप तो करता रहा और जिका कुछ प्रमुख कीट या जिकी प्रमुख व्याधियाँ हैं जिकी अपनी जानकारी में है तो आपा बीज उपचार जद करा तो बीज उपचार करता टाइम आपा इसी दवाइयों को भी सागे प्रयोग कर लेवा जिका

0: के कि फसल बढ़वार की अवस्था में आपा ने कोई भी प्रमुख कीट या प्रमुख व्याधि है बिंगो सामनो कम करनो पर है। इनके अलावा मुख्य तौर पर देखा तो आपने किसान भाई कोई भी प्रकार की फसलों संबंधी जानकारी भी लेना चाहे तो वह आपके नज़दीक कर कृषि विज्ञान केंद्र पर जागे कृषि वैज्ञानिकों फसल में आने वाली कोई भी समस्या या कोई भी अन्य प्रकार की खेती पाती की जानकारी लेना चाहे तो वह कृषि वैज्ञानिकों संपर्क करें और नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर संपूर्ण जानकारी ले सके हैं। आज खातर जानकारी भाई लोगों खातर इतनी ही। अब भाई राजन ने आज्ञा दो, राम राम सा राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें जानकारी का विषय था फूल गोभी की उन्नत खेती। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर घर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
2: साजिद बलाशेरी जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में दो स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने

0: कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सवीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया, जिससे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 1:05 में हैं। अब बहने सुने कार्यक्रम महिला जगत।
2: नमस्कार। आकाश

नमस्कार, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मैं हूं आपकी सखी दिव्या मुद्गल। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। धुएं में मत उड़ाओ अपनी जिंदगी का अरमान, स्वस्थ जीवन ही है सबसे बड़ा सम्मान। जो तंबाकू को अपनाएगा वो बीमारी को बुलाएगा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2026 की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका अर्थ है तंबाकू और निकोटीन उत्पादों को आकर्षक बनाकर युवाओं को लत की ओर धकेलने वाली सच्चाई को सामने लाना। बहनों, आजकल तंबाकू और निकोटीन उत्पादों को रंग बिरंगी पैकिंग, अलग अलग फ्लेवर और आधुनिक स्टाइल के जरिए युवाओं के सामने आकर्षक रूप से पेश किया जाता है, लेकिन इन चमकदार पैकेटों के पीछे छिपा सच बेहद खतरनाक है। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और निकोटीन उत्पाद शरीर को धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाते हैं। कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं इसका परिणाम बनती है। आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा कि असली स्टाइल नशे में नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन में है। खेल, संगीत, योग और अच्छी आदतें ही जीवन को सही दिशा देती है। और अब समय है एक सदाबहार गीत का जो जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

हम बात कर रहे थे तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों की। बहनों, तंबाकू की लत केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करती है। घर का वातावरण, बच्चों की आदतें और आने वाली पीढ़ी, सब पर इसका असर पड़ता है। कई बार हमारी बहनें खुद भी अनजाने में या डिप्रेशन के चलते इस लत की शिकार हो जाती हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और बहनों, अगर घर का पुरुष या बच्चा तंबाकू गुटखे की गिरफ्त में है, तो सबसे ज़्यादा दर्द एक औरत को ही सहना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। आप सभी बहनों से निवेदन करती हूँ, आज अपने घर के चूल्हे चौके को संभालने के साथ अपनों की सेहत की रक्षा का भी संकल्प लें। तंबाकू के इस झूठे आकर्षण के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने बच्चों को सही दिशा दीजिए, अपने परिवार को जागरूक बनाइए, क्योंकि एक जागरूक महिला केवल घर ही नहीं संभालती, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित रखती है। बहनों।

बदलाव हमेशा घर से शुरू होता है। अगर परिवार का साथ और महिलाओं की जागरूकता जुड़ जाए तो तंबाकू जैसी बुरी आदत को हराया जा सकता है। आज जरूरत है प्यार से समझाने की, साथ देने की और सही उदाहरण बनने की, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज की नींव होता है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और नशा मुक्त जीवन ही सच्ची खुशी का आधार है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनिए ये गीत।

रेल की पटरियों पर दौड़ती ये जिंदगी हमें मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन सुरक्षित सफर तभी संभव है जब हम नियमों का सम्मान करते हैं। बहनों, भारतीय रेल केवल एक यातायात का साधन नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। हर दिन लाखों यात्री रेल से सफर करते हैं, कभी छुट्टियों की खुशी, कभी अपनों से मिलने की उत्सुकता, तो कभी काम की भाग दौड़। रेल हर सफर में हमारा साथ निभाती है, लेकिन अक्सर छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम रेलवे के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। रेल यात्रा शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास टिकट हो। बिना टिकट यात्रा करना नियमों के खिलाफ तो है ही, साथ ही परेशानी का कारण भी बन सकता है। स्टेशन पर हमेशा समय से

पहुंचे। प्लेटफॉर्म बदलते समय जल्दबाजी या धक्का मुक्की से बचें। पीली लाइन के पीछे खड़े रहें और चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की गलती कभी न करें। बहनों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग रेलवे ट्रैक पार करने लगते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। ये जोखिम भरा कदम आपकी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। हमेशा ब्रिज या निर्धारित रास्ते का ही उपयोग करें। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें और किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु न लें। सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। रेलवे हमारी अपनी संपत्ति है, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की साफ सफाई बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक बोतल या कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालें। अब सफर और रेल की बात हो और गीतों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो हर मुसाफिर के दिल को छू जाता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वाह क्या खूबसूरत गीत था। उम्मीद है इस गीत ने आपकी रेल यात्रा की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। बहनों सुरक्षित यात्रा केवल रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर यात्री का कर्तव्य भी है। रेल यात्रा में अनुशासन और धैर्य बहुत ज़रूरी है। सीट को लेकर बहस या दूसरों को असुविधा देना सही नहीं है। एक मुस्कान यात्रा को और भी सुखद बना सकता है। अगर यात्रा के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत रेलवे पुलिस या हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें। आपकी जागरूकता कई लोगों की सुरक्षा बन सकती है। वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। यही हमारी संस्कृति और संस्कार की पहचान है। बहनों रेल यात्रा हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि धैर्य और अनुशासन के साथ मिलकर चलने का संदेश भी देती है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें, रेल यात्रा करेंगे सुरक्षित, रेलवे के नियमों का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, गर्म हवाएं और पसीना हमारी त्वचा पर असर डालने लगते हैं। कई बार धूप में ज़्यादा रहने से त्वचा की प्राकृतिक चमक कम हो जाती है, स्किन रूखी दिखने लगती है और चेहरे पर टैनिंग आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से हम अपनी त्वचा को D10 की समस्या से बचा सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना, चेहरे को ढककर रखना और पर्याप्त पानी पीना, ये छोटी छोटी आदतें हमारी त्वचा को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, धूप में निकलते समय छतरी, टोपी और सनग्लासेस का इस्तेमाल भी करना चाहिए। धूप में निकलना है तो त्वचा का ध्यान भी रखिए। सिर्फ खूबसूरती नहीं, अपनी सेहत को भी सुरक्षित रखिए।

बहनों, पानी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर पर्याप्त पानी पीने से त्वचा हाइड्रेट रहती है और उसकी चमक बनी रहती है। इसके अलावा धूप से लौटने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोना चाहिए, एलोवेरा जेल लगाइए और त्वचा को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। गुलाब जल, खीरा और दही जैसी घरेलू चीज़ें भी त्वचा को ठंडक और ताजगी देती हैं। चेहरे की असली चमक मेकअप से नहीं आती, वो आती है अच्छी देखभाल और स्वस्थ आदतों से। और अब समय हो गया है एक गीत का, जो चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती को बड़े ही प्यारे अंदाज में बयां करता है।

0: देखभाल और स्वस्थ आदतों से। और अब समय हो गया है एक गीत का, जो चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती को बड़े ही प्यारे अंदाज में बयां करता है।
1: ये चांद सा रोशन

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है, सादगी भी, मिठास भी और एहसास भी। बहनों, आजकल D10 हटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपनी त्वचा के अनुसार ही करें, क्योंकि हर त्वचा अलग होती है और उसकी ज़रूरतें भी अलग होती है। सुंदर दिखना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना। त्वचा की देखभाल सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों न हो, सही देखभाल त्वचा की मुस्कान बनाए रखती है। बहनों, स्वस्थ त्वचा की शुरुआत हमारे भोजन से ही होती है। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे संतरा, नींबू और आंवला त्वचा को अंदर से रिपेयर करने में मदद करते हैं। वहीं तरबूज और खीरा शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे त्वचा ताज़ा और चमकदार दिखाई देती है। और अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कुछ आसान और घरेलू उपायों की। मसूर दाल का पैक एक बेहतरीन नेचुरल स्क्रब माना जाता है। पिसी हुई मसूर दाल में थोड़ा दूध मिलाकर लगाने से त्वचा साफ और मुलायम महसूस होती है। इसके अलावा पके पपीते में शहद मिलाकर लगाने से टैनिंग कम करने में मदद मिलती है। और रात को सोने से पहले कॉटन की मदद से कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से त्वचा को ठंडक और निखार मिलता है। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले मधुर गीत की ओर, जिसकी धुन आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है।

बहनों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन बदलती जीवन शैली, बाहर का खाना और जंक फूड हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने भोजन में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। अब हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्दी भोजन की जो स्वादिष्ट भी है और वज़न कम करने में भी बहुत मददगार है। स्प्राउट्स सलाद। स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालें जैसे मूंग और चना। जब दालों को भिगोकर अंकुरित किया जाता है तो उनमें पोषण की मात्रा और बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्प्राउट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है। स्प्राउट्स सलाद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए अंकुरित मूंग, प्याज, टमाटर, खीरा और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। हल्का नमक और काली मिर्च डालकर इसे स्वादिष्ट बनाया जाता है। बहनों, ये सलाद कम कैलोरी वाला होता है, लेकिन इसमें पोषण भरपूर मात्रा में होता है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार भूख नहीं लगती। यही कारण है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अच्छी सेहत सबसे बड़ा उपहार है और हेल्दी खाना उसका आधार है। हेल्दी लाइफस्टाइल की इसी खूबसूरत सोच के साथ अब समय हो गया है एक शानदार गीत का। यह गीत हमें जिंदगी को खुशी और सकारात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है।

0: कभी तो हंसाए।
1: बहनों, स्प्राउट सलाद सिर्फ वजन कम करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल शरीर को ऊर्जा देते हैं और दिन भर एक्टिव बनाए रखते हैं। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है। यही नहीं, ये हमारी त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज़ाना अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। सुबह के नाश्ते या शाम के समय स्प्राउट सलाद खाना एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है। बहनों, याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर पाएंगे। अच्छी सेहत हमें आत्मविश्वास, ऊर्जा और खुशहाल जीवन देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्दी आदतों को अपनाएं। थोड़ा संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच हमें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाती है। तो आइए अब सुनते हैं एक और दिल को छू लेने वाला नगमा।

बहनों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारियों के साथ आज का ये कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आज की बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। इसी विश्वास के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है और एक

0: बात जरूर ध्यान रख दिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें।

0: और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की।

0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

अभी आपने असली नकली इस फिल्म का ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं ससुराल, इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए अब सुनते हैं ये मधुर सा गीत। फिल्म का नाम है उम्मीद, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है तेरे बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता।

ये सदाबहार नगमे इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं पतंग, इस फिल्म का ये गीत।

आइए सुनते हैं ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अनमोल घड़ी से। आवाज दी है नूर जहां ने, इस गीत को लिखा है तनवीर नकवी ने और

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला बाजार का ये गीत। आवाज दी है आशा भोसले ने।

आइए सुनते हैं द बर्निंग टेन, इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर भी हमें सुना जा सकता है। दिन के 3 बजे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया सलाहियत बढ़ाने और जदीद तर्ज पर आगे बढ़ने की क्षमता गामजन है। एडमिरल स्वामीनाथन ने यकीन दिलाया कि उनकी अवलीन तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगी कि बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तैयारी और मुकाबला करने की सलाहियत के आला तरीन मेयारात बरकरार रखे जाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और आवाम की फलाह बहबूद के तई गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुल्क में भारत ने छतों पर एक ही दिन में सबसे ज्यादा 15,000 शमसी पैनल नस्ब करने का रिकॉर्ड कायम किया है। भारत ने इस माह की 29 तारीख को ये कामयाबी हासिल की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जोशी ने बताया कि इस कामयाबी में महाराष्ट्र का बड़ा रोल रहा। उसने एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,700 रूफ टॉप शमसी पैनल कायम किए। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस तरह गुजरात के बाद महाराष्ट्र मुल्क में ऐसी दूसरी रियासत बन गई है जो 6 लाख से ज्यादा रूफ टॉप शमसी पैनल नस्ब कर चुकी है। जम्मू डिवीजन के मौसम गर्मा के जोन में आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है जो 1 जून से 15 जुलाई तक होंगी। जम्मू कश्मीर की तालीम, सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईटू ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होने और तलबा और तदरीसी अमले की खैरवाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल गिरासी ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियाई बिजली प्लांट की टरबाइन इमारत पर कल हुए ड्रोन हमले पर तश्वीश जाहिर की है। IAEA ने कहा है कि उसे प्लांट की जानिब से इत्तला मिली है कि दिन में टरबाइन इमारत को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया जिससे प्लांट की एक दीवार में मुबैना तौर पर शिगाफ पड़ गया। एजेंसी ने कहा कि मौके पर मौजूद उसकी टीम ने नुकसान का जायजा लेने के लिए अहाते में दाखिल होने की दरखास्त की। भारत और नेपाल ने आज नेपाल के सूबे गंडकी के जिला मनांग की नेसोन देही बल्दिया में एक नए अस्पताल की इमारत का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के लिए भारत तकरीबन 5,60,00,000 नेपाली रुपए फराहम करेगा। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के नायब सरबराह डॉक्टर राकेश पांडे और नेसोन देही बल्दिया के चेयरमैन धान बहादुर गुरुंग ने मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा। इस मंसूबे से इलाके में सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी और मकामी आबादी को मियारी तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अहमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई का एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल ना कर सके। क्रिकेट में आज IPL 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है। साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। इसके

0: साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं अनिल विश्वास की मौसीकी से सजे हुए, जो कि आज उनका यौम वफात है। अनिल विश्वास 7 जुलाई 1914 को इस बंगाल में पैदा हुए। बचपन से ही मौसीकी का शौक़ था। इब्तदा में आपने ड्रामों में अदाकारी भी की और मौसीकी भी तरतीब दी, फिर धीरे धीरे ये शौक़ परवान चढ़ता गया और फिर 1932 में आपने मुंबई का रुख किया और वहाँ फिर मुख्तलिफ फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी। उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।

मुंबई आने के बाद उन्होंने इब्तदा में मौसीकार के असिस्टेंट के तौर पर काम किया और इसके बाद फिर महबूब खान के साथ मिलकर कई फिल्में उन्होंने बनाई, हम तुम और वो, एक ही रास्ता, बहन और अखिला बाई। ये फिल्में ऐसी थीं जिन्होंने मौसीकी के नए अंदाज को खूब अपनाया और लोगों ने उसे पसंद भी किया।

0: फन के साथ अनिल विश्वास ने कई फिल्में की, जिनमें एक फिल्म थी औरत, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज भी दी थी और वो नगमा काफी मकबूल हुआ था।
1: Ah,

अनिल विश्वास की मौसीकी सजी फिल्मों का जब जब तस्करा होगा तब तब एक फिल्म का नाम जरूर आएगा और वो फिल्म थी पहली नजर, जिसमें इब्तदाई तौर पर मुकेश ने अपनी आवाज में एक नगमा गाया था जिसे सुन

फैज साहब ने जिस अनिल के लिए कहा है वो कोई और नहीं बल्कि लाफानी मौसीकार अनिल बिस्वास है। वही अनिल बिस्वास जिनकी धुनों का सामईन के दिलो दिमाग पर छाया जादू आज 60-70 बरस बाद भी उतरने का नाम नहीं ले रहा।

जिसका हेड था बारिंग घोष, अरविंद घोष के छोटा भाई, और सुभाष बोस दोनों। तो उस वक्त से हमारी तरबियत जो है ना कुछ अलग ढंग से होने लगी, और वक्तन फवक्तन जेल भी जाना पड़ा। 7 महीने जेल में रहने के बाद में जब कोई वो नहीं मिला, आदेश नहीं मिला, कुछ सुराग नहीं मिला, तो लोग मुझे अपने घर पे लेके आए, माँ को खड़े कर दिए बरामदे में, और आंगन में मुझे बेतहाशा मार मारने लगे। माँ मेरी वहाँ पे खड़ी रही और कुछ नहीं कही। तो किसी ने पूछा कि आप

0: अरे सर, तुम एक हफ्ते हो जाए, आपका माली हालत भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा और ये भी मार खाने से हर्जियत से बच जाएगा। मेरी माँ ने ये जवाब दिया था, जिसके लिए मैं ये इस बात को दोहरा रहा हूँ। कहने लगे कि इसके बाद में जब मेरा लड़का बाहर निकलेगा और उसके दोस्तों को जब ये पता चल जाएगा कि ये तुमसे मिल गए हैं और उसके मुँह पर थूकेगा, मैं इससे ये ज़्यादा पसंद करूँगी कि मेरा लड़का जो है ना वो बाजार में कोयला बेचे और जिंदगी बसर करें। ये मेरी माँ थी।
1: जेल से रिहा होने के बाद अनिल विश्वास काम की तलाश में भटकते हुए एक दिन मेगाफोन कंपनी के दफ्तर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर और इनकलाबी शायर काजी नजरुल इस्लाम से हुई, जिनके जेरे साया उन्होंने गजल गायकी की तालीम हासिल की। तभी इत्तेफाकन उन्हें कलकत्ते के एक नामी ग्रामी थिएटर रंगमहल में काम मिल गया। वहां उन्होंने 3 बरस तक नाटकों में काम किया, एक्टिंग की और गाने गाए। फिर एक दिन अचानक वो रंग महल को अलविदा कहकर बंबई की माया नगरी पहुंच गए।
0: फिर मैं वहां से हिंदुस्तान म्यूजिक कंपनी में चला, हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्शन वैरायटी सिंडिकेट लिमिटेड, इसका नाम पूरा नाम, और हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। वहां से और 2 बहुत बड़े कलाकार बाहर निकले हैं, स्वर्गीय कुंदनलाल साइगल और श्री एस डी बर्मन। हम लोग सब इकट्ठे काम करते थे वहां पे। ऐसे में एक दिन वहां पे हिरेन बोस नाम का एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर आया। उस वक्त मैं किसी को वहाँ पे गाना सिखा रहा था, तो पूछने लगे ये गाना किसका है। मैंने कहा मेरा है। लिखा किसने है? मैंने कहा वो भी मैंने लिखा है। ट्यून किसने किया? मैंने ट्यून किया है। गाएगा कौन कौन? मैंने कहा मैं गाऊंगा और ये लड़की गाएगी, ये है डुएट है। और वो पहला रिकॉर्ड था जिसके साथ में थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा, फॉर द फर्स्ट टाइम सरोद वायलिन पियानो और ऑर्गन, ये 4 चीज, और दूसरे तरफ बांसुरी। ये पन्नालाल घोष जी, वो सर पहले मरतबा उसने बांसुरी बजाए थे उस रिकॉर्ड के लिए। तो सुन के आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि बेटे बम्बई चलोगे? तो मैं कुछ सोचने से पहले कि बम्बई क्या है, बम्बई जाऊंगा कि नहीं, बम्बई जाना चाहिए कि नहीं, हमारे मेरी नौकरी है, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ काम, कहने से पहले मैं कह दिया जरूर चलूंगा, आप ले चलेंगे तो। और यू उन्होंने अपना मुझे असिस्टेंट बना के हिरेन बोस साहब 1934 दिसंबर में मुझे लेके बंबई चले आए।
1: अनिल विश्वास बंबई पहुंचे तो सबसे पहले नौकरी मिली ईस्टर्न आर्ट फिल्म कंपनी में। पगार तय हुई 250 रुपए महीना। यहाँ उन दिनों एक फिल्म बन रही थी, भारत की बेटी। इसके एक गाने की धुन अनिल विश्वास ने बनाई। गाना था तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि हर खासवाम की जबान पर चढ़ गया और अनिल विश्वास की एक पहचान बन गया। मगर एक तन्हा म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से पर्दे पर उनका नाम आया धर्म की देवी में। इसके बाद अनिल विश्वास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यके बाद दीगरे कंपनी की 8 फिल्मों में म्यूजिक दिया, तो इंडस्ट्री में उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं रह गया। नतीजतन उन्हें उस वक्त की एक बड़ी फिल्म कंपनी सागर मूवी टोन से बुलावा आ गया। पगार 250 से बढ़कर एकदम 550। बहरहाल जब ये वहां पहुंचे, कंपनी की एक एम्बिशियस फिल्म बन रही थी मनमोहन। अनिल विश्वास को इसके एक ही गाने की धुन बनाने का मौका मिला, मगर ये गाना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान की मानिंद मकबूल हुआ। गाने के बोल हैं, तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया।

0: औरत के बाद आई एक मकबूल तरीन फिल्म रोटी।
1: विश्वेंद्र वो हो गया था बीमार, उसको एक नर्सिंग होम में लेके गया था, मगर हम लोग क्या करते थे, अपना अपना खाने का डब्बा उठा के लेके जाते थे, मैं उनके साथ में बैठते खाना खाएंगे। वो बेचारा सोया हुआ है, उसको एक सूखा हुआ सा वो टोस्ट मिलता था और थोड़ा सा वो सूप मिलता था। हम लोग खाना खा रहे थे और वो हमें बैठ बैठ के बोलता था, खाओ भैयो खाओ, तुम्हारी तकदीर है सर, जिस रोटी के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, हमको देखो क्या मिल रहा है, सूखा हुआ टोस्ट और ये। तो एकदम से मैंने कहा कि महबूब तेरे दिमाग में कोई इसके ऊपर कोई बात आती नहीं है। कहते क्या बात, मैंने कहा रोटी। कहते क्या रोटी क्या, मगर रोटी पे पिक्चर बन सकती है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसके लिए हम लोग सब मर रहे हैं उस पर एक पिक्चर बना तू, हमें रोटी भी कैसी पिक्चर बनेगी, कौन सी भी कैसी पिक्चर बनेगी। तो मेरा तो कम्युनिस्ट का बैकग्राउंड था, तो मैं तो अपना वो सोशलिज्म पे आ गया, उसको समझाया, तो इसका एक खाका बना के लिया। फिर अपना वजाहत मिर्जा और देसाई साहब ये लोग सब थे उसका जो हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट का, कहते उनको उनके उनके सामने हम रखेंगे, तो हम 4-5 पेज के उसका एक खाका बना के लेके आया, लोगों को पसंद आया था और वो रोटी पिक्चर बनी।

0: सागर की अगली फिल्म जागीरदार का मुकम्मल म्यूजिक अनिल बिश्वास को सौंपा गया। दरअसल ये पहली फिल्म थी जिसने उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर शोहरत दिलवाई। इस फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती महबूब से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर सामने आए। अनिल और महबूब की इस दोस्ती ने कुछ बेहद यादगार फिल्में नाजरीन को दी। इनमें एक फिल्म थी औरत, जिसकी बुनियाद में पर्ल एस बक का नोबेल इनाम याफ्ता नॉवेल द गुड अर्थ की कहानी थी। आमतौर पर इसके सभी गाने मकबूल हुए, मगर अनिल बिश्वास की अपनी आवाज में एक गाना खास है।
1: जाना है तो

0: इस फिल्म के बाद महबूब और अनिल की दोस्ती में दरार आ गई।
1: ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, उम्र भर कौन भला साथ दिया करता है। कहने का मतलब ये कि रोटी के साथ में मेरा नाता सिर्फ नेशनल स्टूडियो से नहीं, मैं उससे भी ख़त्म हो गया। वो ऐसे कि उस वक्त टाटा के जो लोग थे वो लोग फिनांस कर रहे थे और उन लोग को वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ इस बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ दो और दो चार नहीं होते, समझे। तो कहने लगे कि बस बंद करो इसे। महबूब में वो कॉन्फिडेंस था, मुझ में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही गया था, सब लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और फिर मैंने ये सोच के महबूब से कहा, ये मैं साफ करना चाहता हूँ इस बात को, ये सोच के महबूब से कहा था कि महबूब मुझे एक नौकरी मिल रही है, जब तक तू पिक्चर शुरू नहीं करे तब तक मुझे यहाँ पे एक दो पिक्चर बनाने दे, उसमें क्या होगा सबके घर में चूल्हा जलेंगे, क्योंकि हम मेरे पास क्या है, आई वॉज मैरिड मैन एट दैट टाइम। तो मुझे डर लग गया कि मैं फिर अपने अपने घर को क्या खिलाऊंगा। तो महबूब मिनट भर के लिए चुप हो गया और फिर हंस दिया, हंसते हंस के कहा कि ठीक है तू जाकर काम कर ले। मैंने कहा तू जिस दिन बुलाएगा और शॉट के अगर गाने के रिकॉर्डिंग के बीच में अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं गाना छोड़ के चलाऊंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ। कहते कोई बात नहीं तू चला जा।
0: सन 1942 में अनिल बिश्वास बॉम्बे टाकीज आ गए। ये कंपनी उस वक्त बसंत फिल्म की तैयारी कर रही थी। अनिल बिश्वास ने इसके नगमों को दिल अफरोज धुनों में ढाला। पेश है एक नगमा।

0: अकीज की अगली फिल्म थी सन 1943 में बनी किस्मत, जिसकी मौसीकी अनिल विश्वास ने तैयार की। इसका एक नगमा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये कैसा अजब इत्तेफाक है कि जुलाई सन 1914 में अनिल की पैदाइश हुई तो उसके साथ ही पहली जंग अजीम का आगाज हुआ। जब उन्होंने किस्मत फिल्म का ये इनकलाबी नगमा मौसीकी में ढाला तो दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। पेश खिदमत है रगों में लहू की रफ्तार तेज कर देने वाला हुब्बुल वतनी से लबरेज ये नगमा।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो

इन दो फिल्मों के बाद अनिल बिस्वास ने बॉम्बे टाकीज की चार और फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनके नाम है हमारी बात, आंख में चोली, ज्वार भाटा और मिलन। इनमें ज्वार भाटा इसलिए काबिल जिक्र है कि दिलीप कुमार ने अपना फिल्मी सफर इसी से शुरू किया था। इसका एक दिल को छू लेने वाला नगमा है सांझ की बेला पंछी अकेला।

टॉकीज छोड़ने के बाद अली विश्वास फिर नौकरी के बंधन में नहीं बंधे। जब तक बंबई में रहे उन्होंने फ्रीलांसिंग की। इस दौर की पहली फिल्म है पहली नजर, जिसमें उन्होंने मुकेश को ब्रेक दिया और एक ही फिल्म से मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री पर छा गए।

अनोखा प्यार फिल्म का अनिल विश्वास के करियर में एक अलग मुकाम है, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसमें उन्होंने मीना कपूर को पहली बार बतौर प्लेबैक सिंगर पेश किया, पर आगे चलकर वो उनकी जिंदगी में ही दाखिल हो गई। इस लिहाज से फिल्म का ये गाना बेहद मौजू है।

इस फिल्म का लता और मुकेश की आवाज में एक सदाबहार दो गाना है, जीवन सपना टूट गया। सामाइन को बता दें कि अनिल बिश्वास ने ये गाना किसी और फिल्म के लिए सहगल और नूरजहां को जहन में रख के तैयार किया था, लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से ये फिल्म नहीं बन सकी, तो इस बेमिसाल कंपोजिशन का इस्तेमाल बिलाखिर अनोखा प्यार में हुआ।

अनिल विश्वास ने जैसे पहली नजर में मुकेश को और अनोखा प्यार में मीना कपूर को ब्रेक दिया, उसी तरह आरजू ने तलत महमूद को ब्रेक दिया और उनसे ये गाना गवाया।

अनिल बिस्वास के म्यूजिक डायरेक्शन में तराना फिर एक तारीखी फिल्म है। तलत की आवाज में इसका कभी ना भुलाया जाने वाला ये नगमा सुनते हैं।

0: फ्रीलांसिंग शुरू करने के बाद अनिल विश्वास ने बहुत फिल्में की, मगर यके बाद दीगरे नए लोगों के साथ काम करते करते उनके दिल में वो पुरानी ख्वाहिश फिर से जागने लगी कि कोई महबूब जैसा हमनवा मिले जिसके साथ बैठकर दोस्ती और समझदारी का मजा लिया जा सके, और उन्हें अब्बास मिल गए।
1: पिक्चर तो मैं बहुत करता रहा, उसके बाद कुछ चली कुछ नहीं चली, कुछ बनी कुछ नहीं बनी, मगर ऐसे लोगों के साथ काम करते करते करते मेरे मन में वो पुरानी ख्वाहिश फिर जगने लगी कि कोई मेरा ऐसा हम नवा मिले जैसे महबूब था, जिसके साथ बैठ के वो मज़ा मिले दोस्ती का और समझदारी का। ऐसे में मुझे अब्बास मिला, और फिर अब्बास के साथ काम करते हुए मुझे इतना मज़ा आया। उसके साथ में मैंने 3 बहुत कामयाब पिक्चरें बनाई, एक राही, एक परदेसी, एक 4 दिल 4 राहें।

अनिल विश्वास ने वैरायटी प्रोडक्शंस के नाम से अपनी फिल्म कंपनी कायम की, जिसके बैनर तले 5 फिल्में बनाई गईं। इनमें एक फिल्म हमदर्द है, जिसे उनके बेमिसाल संगीत के लिए आज 60 साल बाद भी याद किया जाता है। इसके एक गाने में उन्होंने मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें लेकर 12 मासे का खूबसूरत इस्तेमाल किया था।

बंगाली फिल्म नौका डूबी के म्यूजिक डायरेक्टर भी अनिल विश्वास थे, जिसका पूरा म्यूजिक रविंद्र संगीत की बुनियाद पर तैयार किया गया। मगर हिंदी में भी उन्होंने वारिस फिल्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना रविंद्र संगीत की बुनियाद पर कंपोज किया था। सिनेमा के एक बड़े अदाकार तो थे ही, अनिल विश्वास के जिगरी दोस्त भी थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन पर प्रोड्यूसर बनने की धुन सवार थी और उन्होंने राजवंशी प्रोडक्शंस के बैनर से छोटी छोटी बातें बनाई, तो जाहिर है कि उसमें म्यूजिक अनिल विश्वास का ही होना था। पेशी खिदमत है मीना कपूर के दिलकश आवाज में इस फिल्म का एक यादगार नगमा।

बाद अनिल विश्वास फिल्मी दुनिया को और बंबई को अलविदा कहकर दिल्ली आ गए। सन 1963 की पहली मार्च को बतौर ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। इस

पर काम करते हुए उन्होंने तकरीबन 60 लाफानी कंपोजिशंस तैयार की, जिनमें से बेशतर आज भी ऑल इंडिया रेडियो के खजाने में महफूज हैं।

जोड़ी नंबर वन, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, मौसीकार थे हिमेश रेशमिया। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में सुनी, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म है कंगन।

दिल से मिले दिल, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मौसीकार थे बप्पी लाहिरी। और सामने जब सुनिए गोरा और काला फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।

शराबी जा शराबी कहते हैं।

0: और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गंगा जमुना फिल्म का नगमा, नगमा निगार शकील बदायनी, मौसीकार नौशाद।
1: लागा गोरी गुजरिया से

अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मुकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक अहम दरियाफ्त के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वहाँ 6वीं और 7वीं सदी के पांडु वंशी खानदानी सिलसिले के महर्षि बालार्जुन से वाबस्ता तांबे की 3 कामयाब तख्तियां पाई गई हैं। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तذکرہ किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम तांबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बरादरी के लोग खासतौर पर इस बारे में जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहाँ तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज़ किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीने चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं। आम का तذکرہ करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर व बेशतर बात होती है, वज़ीर आज़म ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफ़र अब गाँव से आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहाँ तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने वाले पर गुरिंदर वीर सिंह, टीके विशाल, तेजस विन शंकर, देवमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तذکرہ किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्ह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ़ करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फ़ैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो मुल्क के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज़ फ़िक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फ़रोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज़ करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया सलाहियत बढ़ाने और जदीद तर्ज पर आगे बढ़ने की समत गामजन है। एडमिरल स्वामीनाथन ने यकीन दिलाया कि उनकी अवलिन तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगी कि बहरिया कार्रवाई से मुतालिक तैयारी और मुकाबला करने की सलाहियत के आला तरीन मेयार बरकरार रखे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान ने उस मतन से इतफाक कर लिया है जिसमें उसे एटमी हथियार तैयार करने या हासिल करने से रोकने की बात कही गई है। भारत और नेपाल ने आज नेपाल के सूबा गंडकी के जिला मनांग की नेसन देही बल्दिया में एक नए अस्पताल की इमारत का मुश्तरका तौर पर संगे बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के लिए भारत 5,60,00,000 नेपाली रुपए फराहम करेगा। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने के नायब सरबराह डॉक्टर राकेश पांडे

0: और नेशन देही बल्दिया के चेयरमैन धन बहादुर गुरुंग ने मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा। एटमी तवानाई की बैनुल अक्वामी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज्या न्यूक्लियाई बिजली प्लांट की टरबाइन इमारत पर कल हुए ड्रोन हमले पर तश्वीश जाहिर की है। IAEA ने कहा है कि उसे प्लांट की जानिब से इत्तला मिली कि दिन में टरबाइन इमारत को ड्रोन के हमले का निशाना बनाया गया, जिससे प्लांट की एक दीवार में मुबैना तौर पर शिकाफ पड़ गया। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तहत बेदारी पैदा करना है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। इससे पहले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की जोड़ी को 21-19, 21-18 से हराया था। क्रिकेट में आज IPL 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ख्वातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ के दूसरे मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज़ अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर के तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम के मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि भारतीय मुसल्ह अफवाज मुल्क के इकतदार आला और इलाकई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या की 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का साथियों युववाणी के आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे गर्मी से बचाव की। इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत और साथ ही साथ कुछ सामान्य चर्चा और आज के इतिहास के बारे में भी बातचीत करेंगे। साथियों गर्मी का ये जो मौसम चल रहा है, हालांकि

कि कुछ बारिश की बूंदों ने हर चेहरे पर, फसलों पर, प्रकृति पर, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के चेहरों पर रौनक ला दी है। फिर भी हमारा क्लाइमेट जो है, हमारा ये जो मौसम है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारे देश में हर एरिया में अलग अलग मिजाज का मौसम हर ऋतु में देखने को मिलता है। बहरहाल बात करते हैं यहाँ के मौसम की, तो गर्मी का ये जो मौसम है, बढ़ता तापमान, लू और तेज़ धूप, साथियों इंसान जहाँ भी रहता है अपने आप को प्रकृति के उस स्वरूप में, प्रकृति के उन कारणों में अपने आप को व्यवस्थित कर ही लेता है। फिर भी कुदरत से, प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं, कुदरत सर्वोपरि मानी जाती है। बढ़ते तापमान में खुद को, स्वयं को बचाना होता है, तापमान के अनुकूल प्रभाव से, धूप से, लू से, और ऐसे में कई तरह की सावधानियां जो है वो हमें रखनी होती है। दोस्तों गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जब भी घर से, ऑफिस से, दिन में, दोपहर में बाहर निकलें तो कम से कम हमारा सर जो है वो ढका होना चाहिए किसी कपड़े से, गमछे से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जहाँ भी रहते हैं, जैसा भी तापमान होता है, उसी के अनुरूप हमारी प्रतिक्रियाएं रहती है। आजकल गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के एयर कंडीशनर, कूलर और न जाने कितने ही उपाय हम करते हैं, फिर भी हम जब भी बाहर निकलते हैं तो वहाँ का तापमान जो है, मान लीजिए कि 20-25 डिग्री तापमान से हम बाहर निकल के एकदम से अगर हम 40 डिग्री के ऊपर के तापमान में जाते हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही साथ कई सारे खाने पीने की वस्तुओं के उपाय जो है वो भी हमें मौसम के हिसाब से रखने चाहिए। गर्मी से बचने के लिए इस मौसम में इस तरह के फल जिसमें भरपूर पानी की मात्रा हो, ग्लूकोज हो, तो ऐसे फलों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी जो मौसमी फल होते हैं उनका सेवन अधिक से अधिक मात्रा में हमें करना चाहिए। साथियों गन्ने का जूस जो है वो भी हमारे शरीर में ठंडक पैदा करता है, गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्याज भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अगर हमारी बॉडी को, उसके तापमान को सामान्य रखना है तो कच्चे प्याज, नींबू का रस और साथ ही साथ विटामिन सी का भी प्रचुर मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। इसके अलावा पुदीना, जीरा, सौंफ और शरबत से बने पेय पदार्थ जो है वो भी हमें गर्मी

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: बलमा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुधो चर्चा हम कर रहे थे गर्मी से बचाव की और स्वास्थ्य की देखभाल की। साथियों, गर्मी के मौसम में अपनी खुद की स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो हमें खुद ही करनी होती है। खान पान के साथ साथ साफ सफाई पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गर्मी के इस मौसम में हम सब जानते हैं कि बार बार और अधिक पानी हमें पीना चाहिए, मगर श्रोताओं, जो भी पीने का पानी होता है उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पानी स्वच्छ हो, साफ हो, दूषित ना हो। दूषित भोजन और दूषित पानी का सेवन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग या बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। साथ ही गर्मी के मौसम में गर्मी के कारण हमें अधिक पसीना जो आता है उसकी वजह से हमें स्किन की, त्वचा की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वतः खाने पीने की अगर हम बात करें तो

गर्मी के मौसम में अंगूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और इसकी मात्रा भरपूर होती है, इसलिए अंगूर धूप की हानिकारक किरणें जो होती है उनसे हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से अंगूर बचाता है। साथ ही नियमित रूप से अंगूर का सेवन करने से हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद मिलती है, इसलिए अपनी डाइट में गर्मियों के मौसम में खासकर हमें अंगूर को शामिल करना चाहिए। खीरे की अगर बात करें तो खीरे में पानी की मात्रा भरपूर होती है और खीरे में अनेक प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें भोजन में सलाद के रूप में खीरे का सेवन करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को धूप और गर्मी से बचाव तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी मदद मिलती है। श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे, आइए सुनते हैं पहले ये गीत।

हाँ, मैंने भी प्यार किया है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म का नाम था गुलामी। श्रोताओ, आज हम चर्चा कर रहे थे गर्मी से बचाव की, अपने स्वास्थ्य की, और गर्मी के इस मौसम में रखने वाली सावधानियों के बारे में। साथियों, इन सब बातों के साथ साथ सबसे जरूरी बात हमारे लिए, हमारे युवा साथियों के लिए और हम सब के लिए, वो है राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की और राष्ट्र प्रेम की भावना की। साथियों, हम जहां भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता। साथियों, कितने न जाने स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, वीर सपूत, शहीद, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके सब कुछ देश पर न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई। वो वीर सपूत, आज़ादी के दीवाने, हम उन्हीं की वजह से, उन्हीं के संघर्ष और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम सब अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। संविधान में जो मूलभूत अधिकार हमें मिले हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, समानता का हो, या फिर

किसी भी प्रकार का वो अधिकार जो हमारे लिए आवश्यक था और हमें संविधान ने प्रदत्त किया। साथियों, आज के इस युग में, इस दौर में सबसे जरूरी बात युवाओं को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देना और राष्ट्र हित में सबसे आगे रहना जरूरी है।

सबसे जरूरी बात युवाओं को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देना और राष्ट्र हित में सबसे आगे रहना जरूरी है।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में अभी आपने LOC कारगिल फिल्म का ये गीत सुना। सो तो

बात हम कर रहे थे राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की। साथियों, हमारी गौरवमयी भारतीय संस्कृति जो है, उसमें भी इंसान के जीवन के संस्कारों को परिभाषित किया गया है। इंसान के वर्णित जो संस्कार है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो माना गया है वो है विवाह संस्कार। इस संस्कार से इंसान का गृहस्थ जीवन में प्रवेश माना जाता है। हमारे वर्णित जो आश्रमों की व्यवस्था थी, वो पहले ब्रह्मचारी है, या आज के दौर की अगर हम बात करें तो छात्र जीवन, जिसमें हमारी पढ़ाई और उसके बाद में हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, विवाह संस्कार के लिए किसी भी लड़के और लड़की की जो उम्र है वो निर्धारित की गई है, जिसमें 18 वर्ष की आयु कन्या के लिए पूर्ण करना आवश्यक है। इसी तरह से लड़के की उम्र जो है वो भी 21 वर्ष मानी गई है। साथियों, इन सब बातों को हम इसलिए आवश्यक मानते हैं कि कम से कम सही उम्र आने के बाद में, जब विवाह के बंधन से बनते हैं, तो लड़की में भी लड़के में भी पूरी तरह से मैच्योरिटी आती है और आगे बढ़ने के लिए समझ भी आती है। कम उम्र में शादी करने से छोटी उम्र के लड़के लड़कियों का विवाह करना कानून दृष्टि से बाल विवाह अपराध माना गया है। साथियों, जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, हर पीढ़ी में आने वाली जो भी पीढ़ी है शिक्षित हो रही है, तो धीरे धीरे बाल विवाह जैसी कुरीतियों का अंत भी होता जा रहा है। मगर पूर्ण रूप से आज भी ये प्रथाएं बंद नहीं हुई है। ऐसे में आज हम बात करेंगे राजस्थान की, तो अक्षय तृतीया जैसे कई अबूझ साबे जो होते हैं, उन पर कम उम्र के बच्चों की शादी देखी जाती है। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप माना गया है, अपूर्ण मानसिक विकास और अपरिपक्व शरीर पर मातृत्व और पितृत्व का बोझ डाल दिया जाता है। साथियों, विवाह संस्कार का एक प्रकार से यह उपहास माना गया है। यह दुर्लभ और रोगी संतानों की उत्पत्ति और इस प्रकार की विकट समस्याएं जो है इससे पैदा होती है। यह न केवल अपराध है, अपितु आने वाली उस नस्ल की, उस पीढ़ी की एक दुर्दशा भी हो सकती है। हम सबको चाहिए कि ऐसी कुप्रथाओं से

दूर रहे और समाज में जहाँ भी बाल विवाह जैसे अपराध देखने को मिलते हैं उन पर विराम लगाने की कोशिश करें।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत रचना समीर की, संगीतकार जतिन ललित। स्वतः इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। संध्या के 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की, 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म की जानकारी और कुछ गीत।

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीण परिवार सुनेंगे जानकारी, पशुओं के लिए उज्ज्वला आहार, पशुधन की गर्मियों में देखभाल, सफेद लट व कातरा नियंत्रण कैसे करें, इसके अलावा उपलब्ध होने पर

स्पोर्ट्स कैन, यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त रहेगा 8:45।

न्यूज़ एट 9 अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आप सुनेंगे और रात्रि 9:30 पर अनुगूंज कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा।

अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

स्वतः हमारी सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती।

0: लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
1: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
1: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन

आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। एनआईसीडीसी द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर

0: ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आम जन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT, रिचार्ज शाफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले तीन मैचों में RCB ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई। और IPL क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को DGP डेस्क से सम्मानित किया गया है। SP अमित कुमार, DSP प्रेम

0: कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डिस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। CMHO डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36 शिकायतें दर्ज थी। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की ओर से नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवण खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वैली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच वैली खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ है मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील करी है कि वह ऐड़े लोगों रे प्रयासा ने पहचाने और वारी सराहना करे जगह कुछ नुओ करर सबने प्रेरणा देवे है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोगों से खुद भी किनी चोखा काम से जुड़ने री अर्ज करी।
1: साथियों, भारत के हर गाँव में हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम री 134वीं कड़ी माए प्रधानमंत्री लोगों सू गर्मी रा मौसम माए सावचेती बरतने और न्यारा न्यारा सरकारी महकमा कानी सू जारी गाइडलाइन री पालना करने रो कयो। देसी पेय पदार्थारो जिक्र करता थका श्री मोदी आने अपनाने री अपील करी।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री हाल ही री आपरी नीदरलैंड यात्रा रे चालता वठेरी सरकार कानीसू चोल काल री प्राचीनतम पट्टिकावां ने भारत ने सौंपने माथे इन्हें घणो गर्व रो बकत बतायो। वणा खगोल विज्ञान रे खेतर माए युवावां ने उछास रो जिक्र करता थका देश रे युवा साथियां सू इन विद्या माए पारंगत होने री अरज करी। गर्मियां री छुट्टियां माए एस्ट्रोनॉमी सू जुड़िया विषय माथे क्लब बनार नुओ सीखने रो सुझाव दियो। इनसू पहलियां प्रधानमंत्री आपरा विचार साझा करता थका देशरा न्यारा न्यारा आंचलामाए हुवेरिया नवाचारा राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियां और गांव कस्बारी बातारे साथ है गंगा डॉल्फिन ने बचावा खातिर प्रेरणादायी कामारो उल्लेख करयो। वणा रांची माए संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स होड़ारा रिकॉर्ड धारी विजेतावां ने बधाई देवता थका इन्हें देशरा खेल भविष्य खातिर उपलब्धि बतायो। राज्य भर माए प्रधानमंत्री रे मन की बात कार्यक्रम ने सुनन ने लेर खासो उछास निजर आयो। प्रदेश भाजपा री कानीसू कार्यक्रम रे सजीव प्रसारण री व्यवस्था करी जी। पार्टी मुख्यालय माथे राखी जा कार्यक्रम माए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पदाधिकारी भिड़ाव्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप रे निवास माथे युवावा रे साथे इन कार्यक्रम ने सुनियो। इन मौके माथे मुख्यमंत्री कयो कि राष्ट्र निर्माण माए युवावारी भूमिका खास है। इन सारू वे सामाजिक सरोकार रे कामासू जुड़े और नवाचार अपनार आपरे कौशल माए बढ़ोतरी करे। वणा कयो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विचार युवावा ने सकारात्मक बदलाव और विकसित भारत रे निर्माण खातिर प्रेरित करे है।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
0: खेती माए उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने बकत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वैली। 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सू करेला। अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजनावारो लाभ सीधे गांवा ताई पहुंचायो जावणो पक्को करयो जावेला। कृषि मंत्री सगला राज्यां रा मुख्यमंत्रियां सू इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है। श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सू भी इन पहल माए भेड़ा होने री अरज करी है। वाने कृषि विज्ञान केंद्रां ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथ वर्चुअल संवाद कर

0: जन भागीदारी रे साथे इन अभियान ने आगे बढ़ावन री अरज करी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है। रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 बरस री लीज माथे करो जावेला, वठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 3366 बरस ताई रो इन लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है। जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला। इंड्रो लखस भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है। मंत्रालय कहो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक ऐडी पहल री शुरुआत करनो है जिनरो लखस जल संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटनो है। कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीचे जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला। यह समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रहा हो। प्रदेश माए चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी। जिला मुख्यालय माथे साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो। जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मा हिस्सो लियो। चूरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा श्रम दान कार्यक्रम माए लोगां बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई। इन मौके माथे नाथो तालाब माथे कार्यक्रम राखर जल पूजन करो गयो। सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने बीचे राहगीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो। बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी। इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आम जन ने शपथ दिलाई। करौली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथ आम जन ने पौधारोपण और जल पूजन करो। शिरोई सु माणा खबर नवीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान जल शपथ वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग MPT रिचार्ज साफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल आकाशवाणी समाचार सिरोही।
0: जोधपुर री बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकारा रे साथ है बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आम जनसु सहभागिता निभाने रो हेलो करो। अभियान रे तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रियो है। ओ दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लखसु विश्व स्वास्थ्य संगठन कानिसु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन बरस रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अबे मौसम प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाड़ला दो दिना सु बण्योड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूल भरी आंधी रे साथ बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां माथे बरसात रे साथ है ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर फलोदी जोधपुर नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट, वठीने जैसलमेर श्रीगंगानगर चूरू अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु आज बीकानेर जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ है धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीचे खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजा 7:30 बजे सु शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमा चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए RCB 2 माए और गुजरात टाइटन्स 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमा लीग मुकाबले माए 9 जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल करया हा। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन माए चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया माए रोमांच बण्योड़ो है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सू चोखे काम सू जुड़ने अर कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरकां रे संतुलित उपयोग अर मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। अर आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर गुजरात टाइटन्स रे बीच वेली खिताबी भिड़न। इंद्रे साथे ही प्रादेशिक समाचारां रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: भूल गया हूँ, तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7 बजे हैं, ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुनणिया सगळे परिवाराने भाई राजन गा घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों, बात करा खेती पाती की, तो जिकी आधुनिक खेती है बिंगी उपयोगिता ने समझते थका आपने खेत मापा कई बारी अलग अलग तरीका का प्रयोग करके देखा। कदे कदे वे प्रयोग आपने फायदो दे के जावे तो कदे कदे आपने नुकसान भी उठानो पड़े। पर आपा सगला खेती खड़ मिणक हाँ, और अगर पुराने टाइम की भी बात करूँ और वर्तमान में जिका आज अपना बड़ा बुढ़ा है, वह भी हमेशा आपने एक ही चीज़ सिखावे, जद आपा कोई भी नई चीज़ देखा या खेती पाती में आधुनिकता देखा, तो जीवन में वो ही आदमी सफल हो जिको नई चीज़ ने अपना आगे और बदलाव ने स्वीकार करके बिंगे सागे आगे बढ़े। पुरानी चीज़ ने पकड़ के रखांगा तो कठे ना कठे आपा एक पुरानी मानसिकता के सागे चिपक जावांगा। आपनों पर

अभ्यास हमेशा वही रहना चाहिए, कोई भी नई चीज़ आवे तो आप अभी ने सीखा देखा परखा, अगर सारा मापदंडा पे बा खरी उतरे तो आपा बदलाव ने स्वीकार कर गए और जीवन में आगे बढ़ा और ज़्यादा सफल होगा आपका जिका प्रतिशत है देवी बढ़ावा। खेती पाती के अलावा भी आपा बात करें तो अपने किसान परिवार अतिरिक्त आय के तौर पर पशुधन पाले भी मैं दूध का माध्यम और अलग अलग तरीका का माध्यम आपकी आय बढ़ाने का तरीका सोचें। आपनों जी को पशुधन है भी आपा लगातार अगर केवल दोहन करता रहवांगा तो वो ज़्यादा टाइम तक स्वस्थ को नहीं रहोगे, तो आपा ध्यान रखा कि आपा एक सुव्यवस्थित और संतुलित आहार भी ने खुआवा। ई कड़ी में ही बात करा अजोला आहार की तो पानी गमा उगन आड़ो एक छोटो हरे पौधो कैस कहाँ पाई ने या फर्न भी कह देवा जो कहे कि पशुओं खातर अत्यंत पौष्टिक चारा के रूप में पाई ने उपयोग कर सका हाँ। तेजियों बढ़ने वालों पौधों भाई लोगों कम लागत और अच्छी गुणवत्ता के सागे आपने पशु आहार उपलब्ध करावे। अजोला में प्रोटीन खनिज लवण विटामिन और आवश्यक जिका भी अमीनो अम्ल हुए वह प्रचुर मात्रा में पाया जावे और इंग खातर या पाई ने हरे सोनू भी कह देवा। आपने भारत में पशुओं खातर हरे चारे की जिकी कमी है बा कई बारी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आवे और अजोला जी की है बा ई कमी ने दूर करने को एक प्रभावी उपाय है। जिका भी छोटा किसान परिवार है वह घर पे भी इन्हें आसानी उगा सके और पशुओं ने नियमित रूपों भी वो खुआ जा सके। अजोला है जिको वो पोषक तत्वों भरपूर हुए, प्रोटीन इमें लगभग 20-30% तक हुए, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हुए, प्रचुर मात्रा में आयरन इमें उपलब्ध रहे और जितनी पशुओं के शरीर में आवश्यकता है आवश्यक मात्रा में फास्फोरस विटामिन ए B12 और बीटा कैरोटीन के सागे कई सारा अमीनो एसिड भी इंगमा मौजूद हुए हैं। अपोषक तत्वों का कारण के है वो पशुओं का खातर एक संतुलित पूरक आहार को काम करें। अजोला उत्पादन की विधि आपा थोड़ा सा आपको परिचय करा लेवा तो सब पहले आपा ने एक गड्ढा को निर्माण कराना है जिसको लगभग 2 मीटर लंबो 1 मीटर चौड़ो और 20-30 सेंटीमीटर गहराई आड़ो हुआ है। गड्ढा का मापा प्लास्टिक शीट बिछावा बिंग बाद आपा लगभग 10-15 किलोग्राम उपजाऊ माटी बिंग मार डाला, 2-3 किलोग्राम तक अच्छी सडेडी गोबर की खाद बिंग मां मिलावा और पानी भर गए 10-15 सेंटीमीटर गहराई बिंग मां बना के रखा। लगभग 500 ग्राम उले गए 1 किलोग्राम अजोला कर्चर आपा बिंग मां डाल देवा। प्रतिदिन पानी को स्तर आपा बिंग बना के रखा और हर दिन प्रयास करा कि आपा बिंगी नियमित रख रखाव भी करा। 10-15 दिन में थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद आपा भी मैं वो डालता रहा और तेज धूपों बचाने खातर आपा आंशिक छाया भी ऊपर रखा। अब आपा जब पशुओं ने वो अजोला आहार खिलावा तो किसा पशु ने कितनी मात्रा में आपा इन्हें दे तो गा की बात करें तो लगभग 1-2 किलो प्रतिदिन तक अजोला आहार आपा गा ने खुआस का, इतनी मात्रा आपा भैंस ने भी खुआस का, लगभग 200-500 ग्राम तक मात्रा आपा बकरी ने, 200-500 ग्राम तक भेड़ ने और 20-30 ग्राम तक मात्रा आपा प्रति मुर्गी ने भी देश का हाँ। ध्यान रखा कि अजोला ना आपा अन्य चारा के सागे मिला के खुआवा तो अपना पशुओं का खातर ज़्यादा फायदेमंद हुए। मोटी मोटी बात करें तो पशुओं के दूध उत्पादन में वृद्धि देखने ने मिले और दूध की जी की गुणवत्ता है बिंगमा भी सुधार हुए क्योंकि दूध गमा जी का फैट है वसा है SNF की जी की मात्रा है भी मैं सुधार दिखने लग गया। कम लागत आड़ो इसो आहार है जिको बहुत कम खर्चा में आप तैयार कर सका और पशुपालक भाइयों की जी की लागत है वह कम होने के सागे सागे फायदो है जिको वो भी बढ़ जावे हैं। पशुओं का स्वास्थ्य है जिको वो काफ़ी बेहतर बने। इनके अलावा देखा तो इनमें मौजूद जितना भी विटामिन और खनिज है वह पशुओं की रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता है भी ने बढ़ावे। बछड़ा बछड़ी है बकरियाँ हैं या अन्य जिका भी पशु है बांगे भी शारीरिक विकास में मदद मिले, सागे सागे मुर्गी पालन में भी वो काफ़ी लाभदायक देखने ने मिले। अब सावधानियां जिके आपने रखनी है मोटी मोटी, सड़े गड़े या जिको दूषित अजोला आहार है वो पशुओं ने ना खुआवा, साफ पानी में धो के पशुओं ने अच्छे तरीक़े खुआवा, बहुत ज़्यादा
अधिक मात्रा में भी ना खुआवा, धीरे धीरे आहार

सुनो भाई लोग, आपा भजन बात करा। आपा भजन पहले अपने जी को पशुधन है, बिना आपा किया संतुलित आहार खुआ गया स्वस्थ राक्ष का जी कहूँ के है कि अपने किसान भाइयों की जी की नियमित आय है बा बढ़ जावे। ये कड़ी में आगे चला और बात करा कि अब गर्मियों को टाइम है तो पशुधन की आपा जद देखभाल करा तो भी मापा कि आपने विशेष बिंदुओं पर ध्यान रखना है, कि सावचेती रखनी है, कि अपने पशुओं की आपने देखभाल करनी है। आप सगला जाना हाँ कि आपनों भारत कृषि प्रधान देश है और अठे पशुपालक जिका भी किसान परिवार है बांगी आए है बांगू महत्वपूर्ण स्रोत कृषि है। गर्मियों के मौसम में देखा तो अत्यधिक तापमान, लू और पानी की कमी के कारण के है मौसम पे जिको अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़े है और बिंगे सागे सागे ही पशुओं के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। जय ई मौसम में आपा पशु जितना भी आपा राख रखा है बांगी उचित देखभाल ना करा तो दूध उत्पादन तो कम हुआ ही है, सागे सागे देखा तो पशु बीमार पड़ जाए हैं, बांगी कार्यक्षमता घटने लग जाए। तो इन खातर आपा गर्मियों में पशुओं की विशेष देखभाल करनी अपने खातर जरूरी है। गर्मी को पशुओं के ऊपर भाई लोगों कदी कदी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। ज़्यादा गर्मी के कारण के पशुओं में हीट स्ट्रेस की समस्या उत्पन्न हो जाए, जिनके कारण के भूख लागनी कम हो जाए, दूध उत्पादन धीरे धीरे घटने लग जाए, शरीर में जिकी पानी की कमी है बा होने लग जाए, प्रजनन क्षमता जिकी पशुओं की है बा भी टाइम के साथ प्रभावित होने लग जाए और भांत भांत का रोग है बांगू खतरों भी बढ़ने लग जाए। तो गर्मियों में आपा पशुओं की जिकी देखभाल है बिंगा अगर कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करें तो एक तो आपा ध्यान रखा कि अच्छो स्वस्थ और ठंडो पानी है जिको पशुओं खातर आपा हमेशा उपलब्ध करावा। गर्मियों के मौसम में पशुओं ने कहे पर्याप्त मात्रा में आपा स्वच्छ और ठंडो पानी उपलब्ध करावा। पानी की कमियों के पशु जल्दी बीमार पड़न लाग जाए तो प्रयास करा कि पशुओं ने दिन में कई बार आपा पानी पिलावा। छायादार आवास के आपा बांगे खातर व्यवस्था रखा क्योंकि तेज धूपों बचान खातर के हवादार और छायादार जिको स्थान है वो हर पशुपालक भाई ने जरूर बनानो चाहिए। पशुशाला की छत पर फूस, टाट या अन्य कोई भी गर्मी रोधी सामग्री है बिंगो उपयोग आपा कर सका हाँ। इनके अलावा आपा अभी चर्चा करी ही कि पशुओं ने संतुलित और पौष्टिक आहार खिलावा जिका गमा हरे उचारो है, अजोलो है, बरसीम, ज्वार और संतुलित आहार जिका भी है व्यापा पशु ने देवा। खनिज मिश्रण और नमक भी आपा पशु ने नियमित रूपों खुआता रवा पशु के चारा गमा मिला के। दोपहर के टाइम पर पशुआ ने आपा चराण के खातर ना लेके जावा और प्रयास करा कि जब भी चराण लेके जावा भी टाइम पर सुबह या शाम को टाइम हो जे कहूँ के कि पशुओं को लू भी बचाव हो जाओगे। पशुओं ने दिन में एक या दो बार संभव हो सके तो नुहावा जरूर, नुहायों के कि शरीर को तापमान नियंत्रित हुए और पशुओं ने आराम मिले। साफ सफाई को पूरा ध्यान रखा, पशुशाला और पशुओं की नियमित आपा सफाई करावा, गोबर और गंदगी ने आपा टाइम टाइम पर हटाता रहा ताकि के कि मक्खी और मच्छर है वह पशु ने परेशान ना करें। खनिज मिश्रण और नमक को भी आपा संतुलित उपयोग करता रहा। गर्मियों में के पसीना के सागे शरीर खनिज और लवण है वह निकलन लग जाए तो इनकी पूर्ति खातर पशुओं ने खनिज मिश्रण और नमक भी आपा जरूर खुआवा। इनके अलावा देखा तो गर्मी के मौसम में टीकाकरण और कृमिनाशक जिकी भी दवाइयां हैं बांगू आपा समय पर उपयोग करा। कोई भी प्रकार का रोग का लक्षण जब आपा ने दिखाई देने लग जाए तो तुरंत आपा डॉक्टर साहब चर्चा कर गए और तुरंत

वनस्पति हो काम करते वहां। गर्मियों में विशेष सावधानी की आप बात करें तो पशुओं ने कोई भी बंद जगह पर या गर्म जगह पर आप ना रखा, दूषित पानी है वो ना प्यावा, बासी और फफूंद युक्त चारों खुआणु बच्चा लंबे टाइम तक बने धूप में ना बांधा और पशुशाला में पर्याप्त वेंटिलेशन आपा रखा। दूध उत्पादन में आपा वृद्धि चाहवा हाँ तो आपा है सारी चीज अपनावा, इनके सागे सागे और भी कई लाभ आपा ने मिले, जहाँ पशु स्वस्थ और सक्रिय रहे वहाँ में रोग की संभावना कम बनी रहे, प्रजनन क्षमता है जिसकी टाइम के सागे काफ़ी बेहतर हो जाए और पशुपालकों की आय में भी काफ़ी सुधार हुए। गर्मियों में पशुधन की अगर आपा उचित देखभाल करना चाहवा तो पशुपालकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि पशु को स्वास्थ्य को ध्यान रखे, स्वच्छ पानी, संतुलित आहार, छायादार आवास के सागे सागे नियमित बिंगी देखभाल जरूर करता रहा, पशुओं ने गर्मी के दुष्प्रभावों बचावा और उचित प्रबंधनों के पशुओं को स्वास्थ्य अच्छो बनो रहे, दूध उत्पादन बढ़िया रहे और पशुपालकों ने भी ज़्यादा फायदे देखने मिले। बड़ा कार्यक्रम में एक बार फिर हूँ मनोरंजन की तरफ और सुनावांगा थाने गीत, ब्यू पहले संदेश सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेशों पहला भाई लोगों आपा बात करा किया अपने किसान परिवार एक अच्छो आहार खुआ गए पशुधन ने स्वस्थ रख सके हैं। बात करा खेती पाती की तो अपने किसान भाई बात बात की फसलों की खेती करे और फसल जब बढ़वार पर आवे बी टाइम पर के कई प्रकार की हरी बीमारी फसल में लागे कई प्रकार का कीड़ा कांटा भी फसल में लागे। आज चर्चा करांगा आपा सफ़ेद लट और कातरा गए नियंत्रण के ऊपर क्योंकि यह भूमिगत चिका कीट है फसल की जड़ा ने काफ़ी नुकसान पहुँचावे और अंग प्रकोपों के लंबे अंतराल पर पौधा सूखने लग जाए पौधा की बढ़वार रुक जाए और उत्पादन में भारी कमी आ जाए। सब पहले आपा देखांगा कि दौड़ती जी की लट है बिंगो नियंत्रण अपने किसान भाई क्या करेगा। नियंत्रण पहले चर्चा करा कि पहचान की है आप भाई लोगों एक तरीके

कागू लार्वा होवे जिको भृंग के माध्यमु इंगे ऊपर आवे है, मिट्टी के अंदर रह गया पौधा की जड़ा ने धीरे धीरे खावे है। प्रभावित पौधा जिका है वह पीला पड़ गया सूखन लाग जाए। नियंत्रण उपाय में किसान भाई ध्यान रख सके कि गर्मियों में गहरी जुताई जरूर करे जिका के है कि लटा धूप में आप ही नष्ट हो जाए। खेत के माँ अच्छी तरह सड़ड़ी गोबर की खाद जरूर डाला। मानसून की पहली बिरखा के बाद जिका भी भृंग है बने प्रकाश प्रपंच के माध्यमों आप नष्ट कर देवा जिका ना आप लाइट ट्रैप के माध्यमों भी जाना है। इनके अलावा देखा तो फसल चक्र आप अपनावा, बदल बदल के जब आपा भाई लोगों फसल लेवा तो एक ही प्रकार का रोग या एक ही प्रकार की जिकी बीमारी है बा अपने फसल में कोने लगेगी। इनके अलावा जैविक नियंत्रण खातर अपने किसान भाई मेटारिजियम एनिसोप्ली को प्रयोग भी कर सके हैं। बात करें आपा कातरा की तो इंगे पहचान में के है कि जड़ा ने तना ने और बीजा ने काफ़ी नुकसान पहुँचावे और दीमक के प्रभावों के पौधा मुरझा गए सूखन लग जाए और माटी के माँ देखा तो कदे कदे सुरंगा भी दिखाई देने लग जाए। इंगे नियंत्रण खातर अपने किसान भाई खेत में नमी बना के रखा है क्योंकि सूखी जमीन में दीमक को प्रकोप ज़्यादा हुआ है। फसल अवशेषा ने नष्ट करे अच्छी तरीकों सड़ड़ी जी की गोबर की खाद है भी प्रयोग करें आप। नीम की खड़ी को प्रयोग भी मैं काफ़ी फायदेमंद रहा है और जैविक नियंत्रण भी अगर आप अपनावा तो बिंगो उपयोग भी आप कर सका हम। समेकित प्रबंधन की आपा बात करें तो गर्मियों के टाइम पर गहरी जुताई करें आप, खेत ने खरपतवार और अवशेषाओं मुक्त रखा, संतुलित उर्वरकों को आपा प्रयोग करता रहा और जैविक और जैव नियंत्रण जिका भी उपाय है बना आपा प्राथमिकता देवा। जब आपा नहीं यहाँ लगा कि प्रकोप ज़्यादा होने लग रहे तो बी टाइम पर कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग की सलाह के हिसाब हुई आपा जिका स्वीकृत कीटनाशक है बांगू प्रयोग करा। मोटी मोटी बात आपा देखा तो दौड़ती लट और कातरा है दोनों ही के है कि फसल की जड़ा ने गंभीर रूप नुकसान पहुँचावे और समय पर आगे पहचान गहरी जुताई और स्वच्छ खेत के साथ अगर आपा जैविक नियंत्रण और उचित कृषि प्रबंधन करा तो आगे प्रकोप ना आपा प्रभावी रूप नियंत्रित कर सका हाँ। जिकाऊ के कि आपने फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, किसान परिवार की जिकी करड़ी मेहनत है वह सफल होगी और फसल की जिकी गुणवत्ता है वह भी अच्छी रहेगी। तो आज सगली चीज़ आपा ध्यान में रखा और सुनावा थाने एक रागणी जी, लो सुनो साहब।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेशों पहला भाई लोगों सुनिए आपा रागनी चर्चा करा आपा भाई लोगों अपनी खेती पाती की कि क्या किसान भाई पशुओं ने संतुलित आहार खुआ गए बांगी अच्छी देखभाल कर गए आपकी आय ने बढ़ा सके और क्या बढ़ती फसलों में अच्छी देखभाल कर गए रोग

और व्याध्याओं क्या छुटकारो पास के हैं। इंगे अलावा भी आपा बात करा तो आपा ई देश का नागरिक हाँ और आपने राष्ट्र के हित में अपनी भी की जिम्मेदारियां बने हैं। चर्चा करा सबू पहली शुरुआत ईमानदारी आपा राष्ट्र की उन्नति खातर कोई भी नागरिक है बिंगो ईमानदार होनो भाई लोगों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आपनों राष्ट्र तरक्की करेगो तो आपनी निजी तरक्की होगी। इंगे अलावा बात करा तो कोई भी प्रकार को कर आपने अगर भरनो है तो बिंगो भुगतान आपा टाइम पर करा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ने मजबूत करण खातर अपना जितना भी कर है बांगो आपा सही समय पर भुगतान जरूर करा। स्वदेशी वस्तुओं को जिको उपयोग है वो आपा ज़्यादा करा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ने बढ़ावा देने खातर आपा मेक इन इंडिया ने अपनावा और जितनी भी स्वदेशी वस्तुएं हैं जठे तक संभव हो सके बांगो उपयोग करा। शिक्षा ने हमेशा बढ़ावा देवा, क्योंकि शिक्षित नागरिक राष्ट्र निर्माण की नींव हुए हैं। अगर प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा तो आपनों राष्ट्र भी शिक्षित राष्ट्र मान्य जाओगे।

क्योंकि जब आप राष्ट्र तरक्की करेगो तो अपनी निजी तरक्की होगी। इन अलावा बात करा तो कोई भी प्रकार को कर आपने अगर भरनो है तो बिंग भुगतान आपा टाइम पर करा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ने मजबूत करण खातर अपना जितना भी कर है बांगो आपा सही समय पर भुगतान जरूर करा। स्वदेशी वस्तुओं को जिको उपयोग है वो आपा ज़्यादा करा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ने बढ़ावा देन खातर आपा मेक इन इंडिया ने अपनावा और जितनी भी स्वदेशी वस्तुआं हैं जठ तक संभव हो सके बांगो उपयोग करा। शिक्षा ने हमेशा बढ़ावा देवा, क्योंकि शिक्षित नागरिक राष्ट्र निर्माण की नींव हुए हैं। अगर प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा तो आपनो राष्ट्र भी शिक्षित राष्ट्र माने जावेगो। इनके अलावा बात करें आपा प्रकृति के प्रति भी आपनों कुछ कर्तव्य बने हैं। आपा जद भी समय मिले या आपा संकल्प लेके भी वो कार्य कर सका, समय समय पर वृक्षारोपण करता रहा और अपने पर्यावरण की भी आपा रक्षा करा। पर्यावरण संरक्षण राष्ट्र की दीर्घकालिक भलाई खातर भी बहुत जरूरी है। सब मु जरूरी बात समय को सदुपयोग करा और समय को पालन करा, क्योंकि भाई लोगों समय को सदुपयोग केवल व्यक्ति नहीं कोनी व्यक्ति के सागे सागे देश की भी प्रगति में सहायक हुए। सही समय पर सही काम करो हमेशा एक व्यक्ति के सागे सागे एक राष्ट्र ने भी फायदों पहुँचावे। बात करा सामाजिक सौहार्द की तो आपा कोई भी प्रकार को धर्म जाति या भाषा यूं हमेशा ऊपर उठ के एकता और भाईचारा ने बढ़ावा देवा। जद भी मौको मिले एक जिम्मेदार नागरिक बन गए सही नेतृत्व खातर वोट जरूर देवा और वोट देनो राष्ट्र के हित में ही आवे हमेशा। सड़क नियमों को आपा पालन करा, छोटी छोटी जिकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ए भी राष्ट्र की सुरक्षा में हमेशा जुड़ी हुए। और अंत में बात करा तो सब जरूरी स्वच्छता आपा अपनावा, क्योंकि स्वच्छ भारत हुई स्वस्थ भारत और शक्तिशाली भारत को निर्माण होगा। सगली बातों को आपा ध्यान रखा और चलना कार्यक्रम गए अंतिम गीत की तरफ। लियो सुनो सा।

भाई लोगों, आज खातर तो इतोई ई गीत के सागी आजो चौपाल कार्यक्रम अठे संपन्न करणगी भाई राजन आज्ञा देव। राम राम सा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी यशुदास की। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना कैफी आजमी की, संगीतकार मदन मोहन।

आइए सुने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म चोरी चोरी का ये गीत। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

तेज हो जाता है खुशबू का सफ़र शाम के बाद, तेज हो जाता है खुशबू का सफ़र शाम के बाद। फूल शहरों में खिलते हैं मगर शाम के बाद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, श्रीपाल शर्मा का।

स्वदौ फिल्म आन मिलो सजना 24 दिसंबर 1970 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म संगीत से भरपूर और नाट्य फिल्म थी। इस फिल्म के लेखक थे सचिन भौमिक। निर्देशन के रूप में सहयोग दिया मुकुल दत्त ने। इस फिल्म में सभी गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए। निर्माता के रूप में जगदीश कुमार और फिल्म के अभिनेता के रूप में काम करने वाले कलाकार थे राजेश खन्ना और अभिनेत्री आशा पारेख। इसके अलावा विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ और निरूपा राय ने भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

फिल्म कुंज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी फिल्म आन मिलो सजना में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। ये फिल्म सारेगामा संगीत एल्बम के द्वारा रिलीज की गई थी।

आशा पारेख, जिन्होंने इस फिल्म में वर्षा यानी दीपाली का अभिनय किया था, वहीं राजेश खन्ना ने अजीत के नाम से अपना अभिनय दिखाया था। विनोद खन्ना इस फिल्म में अनिल चौधरी की भूमिका निभा रहे थे, तो वहीं राजेंद्र नाथ, अभि भट्टाचार्य, अरुणा ईरानी, जूनियर महमूद, डेविड दुलारी बिरबल और ब्रह्म भारद्वाज सहित कई किरदारों ने इस फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म के गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए। आज भी इस फिल्म के गीतों को जब भी सुनते हैं तो हमें साथ में गुनगुनाने से कोई नहीं रोक सकता।

स्वतः वो फिल्म आन मिलो सजना में लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने जो संगीत दिया और वहीं आनंद बख्शी ने जो गीत लिखे, आज जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो उस समय का, उस दशक का वो ज़माना आंखों के सामने उभर आता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही और इस फिल्म का गीत जो हम आपको सुनवाएंगे, अच्छा तो अब हम चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। यह फिल्म राजेश खन्ना की 1969 से 1971 के बीच की सबसे लगातार सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि 1970 में जब अन्य फिल्मों के मध्यांतर में आन मिलो सजना का ट्रेलर सिनेमा हॉल में जब दिखाया जाता था तो राजेश खन्ना के पर्दे पर आते ही दर्शक उत्साह से झूम उठते थे।

श्रोताओ, फिल्म आन मिलो सजना में हमने आपको बताया कि राजेश खन्ना ने अजीत की भूमिका निभाई थी, जो एक संवेदनशील, साहसी और बुद्धिमान ग्रामीण युवक के रूप में पहचाने गए। उसके परिवार को अतीत से एक झूठे अपराध में फंसा दिया गया था। यह पात्र फिल्म में न्याय, सत्य और मुक्ति जैसे विषयों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। राजेश खन्ना के अभिनय में गहन भावनात्मक और सूक्ष्म के साथ साथ हास्य का संतुलन भी इस फिल्म में दिखाई देता है, जो पारिवारिक या नाटक के विकास में अजीत की भूमिका को प्रभावशाली बनाता है।

0: स्वतः फिल्म आन मिलो सजना में गीतों में आवाज़ देने वाले कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: जब तुम कहोगे
2: कल मिलो या परसों,
1: परसों नहीं नरसों,
2: कहाँ

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में मनु भाकर और सम्राट राणा का शानदार प्रदर्शन, रजत पदक किए अपने नाम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारत की मेंस डबल्स जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में खेल मंत्री ने कहा कि इस जीत के साथ 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। डॉक्टर मांडविया ने इसे भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। आइए जानते हैं किसी प्रकार भारतीय जोड़ी ने कुशल खेल प्रदर्शन करते हुए खिताब को अपने नाम किया है।
1: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने आज पुरुष डबल्स फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री की जोड़ी को हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम में पिछड़ने के बाद रोमांचक मुकाबले में 18-21, 21-17 और 21-16 से जीत दर्ज करते हुए सुपर 750 का अपना तीसरा खिताब भी हासिल किया। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज इस भारतीय जोड़ी के लिए ये जीत महत्वपूर्ण है। सात्विक और चिराग ने पिछली बार 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था। तब से वो 4 फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन हर बार उप विजेता रहे। सिंगापुर में जीत के साथ उन्होंने खिताबी सूखे को भी समाप्त कर दिया है। फाइनल से पहले भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया की इस जोड़ी के खिलाफ खेले गए 3 मुकाबलों में से 2 में हार का सामना करना

0: ना पड़ा था। इस प्रतिद्वंदी जोड़ी के खिलाफ उनकी पिछली हार जनवरी में मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में हुई थी। कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में पिछड़ने के बावजूद भारतीय जोड़ी ने अपने खेल की गति बढ़ाई और लंबी रैलियों में दबदबा बनाते हुए विश्व नंबर 3 इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ मुकाबले का रुख पलट दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के मौजूदा विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त किम वोन हो तथा सियो सेंग जे की जोड़ी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन इस भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 2 वर्षों में अपना पहला खिताब जीता। ये उनके करियर का 9वां BWF विश्व टूर खिताब है। अब सीधे रुख कर लेते हैं अहमदाबाद की ओर, जहां IPL क्रिकेट का महामुकाबला जारी है। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। साई सुदर्शन ने 12 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 10 रन बनाए। निशांत सिंधु ने 20 और जॉस बटलर 19 रन पर आउट हुए। अभी वॉशिंगटन सुंदर और अरशद खान क्रीज पर मौजूद है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो जैकब डफी ने 3 ओवर में 22 रन दिए। भुवनेश्वर कुमार ने 11 रन दिया है 2 ओवर में। जॉश हेजलवुड ने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं रशिक सलीमदार ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। अब रुख कर लेते हैं एथलेटिक्स की ओर। भारत ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ चीन शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें संस्करण में रांची में आयोजित हुए फेडरेशन कप में 100 मीटर फ्री स्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने भारत के दोनों एथलीटों से फोन पर बात भी की और उनके संघर्ष की कहानी सुनी।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके दौड़ ले या खेल ले। जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
3: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
4: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा।

0: मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है।
2: गुरिंदर वीर और अनिमेश ने शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अब रुख कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां निशानेबाजों ने कई पदकों पर निशाना साधा। म्यूनिक में राइफल

0: हिम्मत बना के मैं चला और आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है।
2: गुरिंदर वीर और अनिमेश ने शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अब रुख कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां निशानेबाजों ने कई पदकों पर निशाना साधा। म्यूनिख में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में मनु भाकर और सम्राट राणा ने रजत पदक जीता।
3: राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप के आखिरी दिन मनु भाकर और सम्राट राणा की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। भारतीय जोड़ी को चीन के विश्व नंबर एक और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन याओ क्यांगसुन और हु काई ने 0.3 अंक से मात देकर स्वर्ण पदक जीता। भारत रजत पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते, जबकि चीन 4 स्वर्ण और 3 कांस्य के साथ पहले स्थान पर रहा। जर्मनी के म्यूनिख में मनु और सम्राट की शुरुआत धीमी रही। 5-5 शॉट की पहली सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी ने कुल 100 का स्कोर किया और 4 टीमों के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। इसमें सम्राट ने 51 और मनु ने 49 का स्कोर किया। दूसरी सीरीज में मनु ने अपनी लय पकड़ते हुए 51.5 का शानदार स्कोर किया, जबकि सम्राट 49.9 के स्कोर की मदद से ये जोड़ी दूसरे स्थान पर पहुंच गई। तीसरी सीरीज के आखिर में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी के साथ अंकों का अंतर घटाकर सिर्फ 0.1 कर दिया। इसमें मनु ने 51.8 का बेहतरीन स्कोर किया, जबकि सम्राट ने भी 50.7 का एक और अच्छा स्कोर किया। अगली एलिमिनेशन सीरीज में सम्राट ने 31.2 का स्कोर किया, लेकिन मनु के 19वें और 20वें शॉट में चूकने से चीन की जोड़ी को वापसी करने का मौका मिल गया। मनु ने आखिरी सीरीज की शुरुआत 10.6 के स्कोर से की, लेकिन सम्राट सिर्फ 8.8 का स्कोर ही कर पाए, जिससे चीनी जोड़ी की बढ़त और बढ़ गई। याओ ने 23वें शॉट में खुद 8.7 का स्कोर किया, लेकिन हु काई ने 3 शॉट में 10 से ज्यादा का स्कोर करके इसकी भरपाई कर दी। इस बीच भारतीय जोड़ी बढ़त को सिर्फ 0.3 अंकों तक ही कम कर पाई, जिससे उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: अब बात कर लेते हैं शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपने हमवतन आर प्रज्ञानंदा को क्लासिकल मुकाबले में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए और खिताब की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा, जबकि महिला वर्ग में दिव्या देशमुख शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं मैग्नस कार्लसन को वेस्ली सो से हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला जेस्पर डी जोंग से जारी है, जबकि महिला सिंगल्स में मार्ता कोस्तियुक ने दिग्गज ईगा स्वायतेक को हरा दिया। वहीं प्रतियोगिता में उलटफेर का दौर जारी है। फ्रांस की डायने पेरी ने छठी वरीयता प्राप्त अमांदा अनिसिमोवा को 3 सेट तक चले मुकाबले में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड में जगह बनाई। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाने के लिए इंपैक्ट प्लेयर नियम को खत्म करने के सुझाव दिए। दिग्गज बल्लेबाज सचिन ने पुरस्कार समारोह में कहा कि इससे खेल संतुलन सुदृढ़ होगा।
4: The impact player needs to go away. That is my personal opinion. I feel when T20 format, you just have to play 20 overs and then you are adding one more batter to that lineup, where bowlers are already being challenged. I find that imbalance. The second one may be a suggestion that the power play of 6 overs with field restrictions, only 2 fielders allowed outside the ring. Let the first 4 overs be batters power play with same field restrictions, and post that the remaining 2 power play overs should be determined by the fielding captain as and when he wants to take. But those 2 consecutive overs will also get 1 fielder extra outside the ring at any stage of the game. So, you know, you are able to control the game better. And 1 bowler should be allowed to bowl 5 overs. Because you would invariably, the best bowler of the side is going to bowl that 5th over. Wouldn't you want to see that best bowler bowl more? Like the top batters are batting sometimes even 20 overs. Why shouldn't the best bowler be bowling 5 overs?
2: सचिन तेंदुलकर ने युवा वैभव सूर्यवंशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैभव ने लाइन एंड लेंथ पिक करके शानदार बल्लेबाजी की है।
4: It was magnificent. I mean, it's something truly special. And not just the ability to hit the ball, but what also fascinated me was the wrist work that he has. And that allows for any good batter to be able to play in all

0: directions of the ground, you need good wrist work. And he's not slogging the ball. He's just picking the line and length earlier than the rest of the guys, and he's able to clear the rope comfortably.
1: कर लेते हैं स्क्वैश की ओर. भारत के अभय सिंह और वीर चोटरानी ब्रिटिश ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं. वहीं रमित टंडन और अनाहत सिंह इस पीएसए डायमंड स्तर के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां फाइनल मुकाबला जारी है. गुजरात टाइटन्स ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं. राहुल तेवतिया अभी क्रीज पर आए और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ. आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की. हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की. म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत. भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया. श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की. ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है.
3: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं. अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं. साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है. साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है. सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते. जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास. इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है.
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया.
3: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे. श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे. उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया. सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प. ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे. धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा. आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया. लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी.
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे.
3: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई. करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था. मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की. इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे. गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं. इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है. उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को

0: प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता

0: संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है।

0: मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया।

0: tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें।

ये अंदाज सारे जहां से निराले, कोई अपने दिल को कहां तक संभाले। निगाहें मिलाकर तड़पता न छोड़ो, मरीजे मोहब्बत का क्या है ठिकाना। अभी आपने भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुनी, आइए सुने इन्हीं की आवाज़ में ये गज़ल।

सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। अभी आपने सुनी भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम अनुगूंज आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: ऑल इंडिया रेडियो,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी

0: कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बात चीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, प्रसार भारती भारत का बदलता आज।

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी

इस सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: सुनी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
2: बोल कहीं बोल यहाँ तो न बोल श्यामा,

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला मरण।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुगूंज, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नू जेप्पा कारण।

0: मेनी, ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री असनापुर पुयर्रैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सूरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकटरमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकटरमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asanapurappu Yerraya and Party in the Ravivasari Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari.

आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।